सुप्रभात। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है। आज शनिवार है, सक संबत 1948, भाद्र माह की तिथि 20, तदनुसार 12 सितंबर ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान, कलाकार थे अनूप जलोटा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

कोरस स्वर में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए आपको आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगी मृणालिनी अखौरी। 7:00 समय होगा जोहार चाईबासा का, जिसमें आप कुछ बॉलीवुड फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे। और प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 8:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:40 पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। और श्रोताओं कार्यक्रम माटी की महक में आज आपको सुनवा रहे हैं संथाली लोकगीत सोना मुर्मू और साथियों के स्वर में। सुबह 9:00 प्रसारित करेंगे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आप कुछ जानकारियों के अलावा सुनेंगे किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रसरंजन। 10:00 हम आपको सुनवाएंगे आज फिल्म संगीत। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र हमारे अगले कार्यक्रमों के लिए। हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर। तो श्रोताओं अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

श्रोताओं, मृणालिनी अखौरी के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के चाय बसा केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोताओं, आकाशवाणी के इस खूबसूरत प्रातःकालीन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त निशा और लेकर आई हूं सुबह के इस सुहानी बेला में जोहार चाय बसा का कार्यक्रम, जिसमें आप कुछ सुनेंगे उपयोगी बातें और कुछ ऐसे सदाबहार गीत जो आपके दिन को और भी खुशनुमा बना दें। सुबह का समय अपने आप में एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है दोस्तों। रात चाहे कितनी भी लंबी रही हो, सूरज की पहली किरण हमें यही बताती है कि हर दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह हमें जीवन की एक नई शुरुआत का अवसर देती है, इसलिए बीते कल की चिंता छोड़कर हम आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो आइए इसी सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं हमारे जोहार चाय बसा कार्यक्रम की यह यात्रा।

सचमुच कल किसने देखा। कितना सुंदर गीत था श्रोताओं। सच कहें तो संगीत की तो यही खूबी है, कुछ ही मिनटों में ही हमारे मन के वातावरण को बदल देता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की प्रातःकालीन सभा में ये गीत, और हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत की, आपके सफ़र की, और उन गीतों की जो हमारे जीवन की खूबसूरत यादों से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, अब बात करते हैं मौसम की। सितंबर का महीना चल रहा है, मॉनसून अभी भी पूरी तरह विदा नहीं हुआ है। हमारे आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना हो सकती है। ऐसे मौसम में सुबह घर से निकलते समय छाता या रेनकोट अपने साथ रखना उपयोगी होगा। बारिश के दौरान बिजली चमक रही है तो खुले स्थान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से आप बचें। और सबसे ज़रूरी बात, मौसम का आनंद जरूर लें, लेकिन सावधानी के साथ।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर मनाडे और साथियों की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म शोर से।

और अब श्रोताओं, एक छोटी सी जरूरी बात उन श्रोताओं के लिए जो इस समय अपने काम, स्कूल, कॉलेज या किसी ज़रूरी सफ़र के लिए अपने घर से निकल रहे हैं। बारिश के बाद सड़क पर फिसलन हो सकती है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें। कार में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। सड़क गीली हो तो वाहन की गति कम रखें। सामने वाले वाहन से पर्याप्त दूरी जरूर रखें और मोड़ पर विशेष सावधानी बरतें। याद रखिए, जल्दी पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित पहुंचना। मोबाइल पर, फ़ोन पर बात करते हुए वाहन कृपया ना चलाएं। पैदल चलने वालों को भी सड़क पार करते समय प्राथमिकता दें। और सुरक्षा के इस संदेश को श्रोताओं आप जरूर याद रखें और सुने ये प्यारा सा खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया रविंद्र जैन के गीत संगीत में फिल्म राम तेरी गंगा मैलिका ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना महबूबा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत यदि थोड़ी सी सजगता के साथ हो तो हमारा पूरा दिन बेहतर गुजर सकता है। सुबह उठकर पर्याप्त पानी पिएं, हल्का व्यायाम करें या टहलें, पौष्टिक नाश्ता करके अगर आप अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और बारिश के मौसम में विशेष रूप से साफ सफाई का भी ध्यान रखें। बाहर का बहुत अधिक तला भुना या खुला रखा हुआ भोजन करने से बचें और साफ पानी पिए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और हाँ, सुबह की चाय के साथ अगर कोई आपको ये पुराना पसंदीदा गीत मिल जाए तो फिर दिन की शुरुआत की क्या कहने है?

श्रोताओं, अभी आपने सुना जानिसार अख्तर का लिखा ये गीत, जयदेव की धुन पर लता मंगेशकर का गाया, फिल्म प्रेम पर्वत से। कुछ गीत केवल हमारे लिए गीत नहीं होते, वे हमारे जिंदगी के किसी न किसी पल की याद बन जाते हैं। दोस्तों, कभी कोई गीत बचपन की याद दिलाता है, तो कभी कॉलेज के दिनों की, कभी दोस्तों की, और कभी एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारे दिल के बहुत करीब रहा हो। इसलिए तो पुराने फिल्मी गीत आज भी हमारे बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। तो यादों की इसी खूबसूरत पोटली से हम निकालते हैं और एक नगमा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना खयाम के धुन पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म खानदान का ये गीत, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है, और हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे आज के जोहार चाईबासा कार्यक्रम में ये सदाबहार गीत। श्रोताओं, सुबह की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है। बारिश के बाद पेड़ पौधों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और आसमान में तैरते बादल, प्रकृति हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती है। वह सिखाती है कि परिवर्तन ही हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे बादल आते हैं फिर छट जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियां भी आती है और जाती है। तो इसलिए आज का दिन मुस्कुराकर शुरू कीजिए, और अपने मन में यह विश्वास जरूर रखिए कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। और इसी उम्मीद के साथ सुनिए हमारा कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार का गाया फिल्म मनचली का ये गीत। दोस्तों, जिंदगी में हमारे सामने रोज कितनी तरह की चुनौतियां आती है, लेकिन हमारी सोच यह तय करती है कि हम उन चुनौतियों को किस तरह देखते हैं। अगर परेशानी को अंत समझेंगे तो हमारे सारे रास्ते बंद नजर आएंगे, लेकिन अगर उसे एक सीख समझेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता अवश्य दिखाई देगा। इसलिए आज सुबह अपने आप से एक छोटा सा वादा जरूर करें कि मैं आज किसी छोटी सी बात पर निराश नहीं होऊंगा। मैं अपने काम को ईमानदारी के साथ करूंगा, जहां तक संभव होगा दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा। यही छोटी छोटी कोशिशें हमारे जीवन को सुंदर बना सकती है दोस्तों।

श्रोताओं, आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म अभी तो जीले का ही ये गीत। और दोस्तों, धीरे धीरे सुबह अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। घर में नाश्ते की तैयारी हो रही होगी, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके होंगे, कोई कार्यालय जाने की तैयारी में होगा तो कोई खेत खलिहान में अपने दिन का काम शुरू कर चुका होगा। हमारे ग्रामीण और शहरी दोनों श्रोता आज की सुबह हमारे साथ हैं। आप चाहे शहर की भागती हुई जिंदगी में हो या गांव की शांत सुबह में, आकाशवाणी की यह आवाज़ आप तक यही संदेश लेकर आती है कि हम आप अकेले नहीं हैं दोस्तों, आपकी सुबह हमारे साथ है। और सुनिए चलते चलते ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म मुनीम जी का ये गीत। श्रोताओं, अब समय है आज की इस खूबसूरत संगीतमय यात्रा को विराम देने का। आज हमने बात की अच्छे विचार की, सुबह के मौसम की, स्वास्थ्य की और यातायात सुरक्षा की, और सबसे बढ़कर आपने सुना बहुत सारे सदाबहार गीत। आज का हमारा संदेश श्रोताओं बस इतना ही है कि सुबह को शिकायतों के साथ नहीं, संभावनाओं के साथ शुरू कीजिए। मौसम चाहे बादलों से भरा हो या धूप हो, हमारे मन में उम्मीद की रोशनी अवश्य बनाए रखिए। आपका आज का दिन मंगलमय हो, स्वस्थ हो और खुशियों से भरा हो, इसी संदेश के साथ समय हो चला है विदा लेने का जोहार चाय बसा कार्यक्रम से।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का देश ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उपप्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उपप्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटक्यो भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति कासिम फेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
0: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियाँ। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
0: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
9: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मुक्की में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी, पुतिन, फिजिशकियान। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4th और कुल 6th खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की, यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई, उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज, और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ, नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning. And now the news in detail. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy, security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. The Prime Minister is scheduled to hold a series of bilateral talks with BRICS leaders on the sidelines of the summit today. These include meetings with Chinese President Xi Jinping, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, and Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung. Our correspondent has filed this report.
13: New Delhi has taken center stage for BRICS 2026, with world leaders converging at a time when there is global churn and instability. The leaders meet at the backdrop of conflicts in West Asia and the Black Sea region, energy crisis and climate change. BRICS has emerged as a key platform for coordinating economic policy among major emerging economies. It serves as the principal forum where these nations shape a common position on global governance. Through sustained dialogue, it has become a channel for advancing the interests of the Global South within multilateral institutions. Its agenda spans development, finance, technology, trade, and people-to-people exchanges. India's chairship is guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. The theme places development, sustainability, and innovation at the heart of the agenda. With Anand Kumar, Suparna Sekhya, Akashwani News, Delhi.
12: Prime Minister Narendra Modi has called for secure sea lanes, open supply routes and the safety of seafarers to sustain global trade. He also urged BRICS countries to work towards removing trade barriers and expanding opportunities for businesses. Mr. Modi stated this while addressing leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. The Prime Minister said India was a strong advocate of freedom of navigation and the safety of seafarers, stressing that secure maritime routes were essential for the smooth movement of global trade.
4: Global trade तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो. और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है.
12: Amid rising trade barriers globally, Prime Minister Modi said India was seeking to build economic bridges. He said India today offers a source of confidence for growth and stability.
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है. 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं. ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना.
12: Earlier, Prime Minister Modi held bilateral meetings with Russian President Vladimir Putin, Iranian President Masoud Pezeshkian and UN Secretary General Antonio Guterres in New Delhi yesterday, ahead of the 18th BRICS summit. During his meeting with President Vladimir Putin, the two leaders reviewed progress in India-Russia cooperation across a wide range of areas, including politics, trade and economy, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people ties. Both sides also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. In view of the BRICS summit in New Delhi, traffic diversions and regulated movement will be implemented on key routes across the national capital from 9:30 a.m. to 9 p.m. today. The traffic police have advised the commuters to plan their journeys in advance and allow extra travel time. The government has approved 18,77,000 houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0, giving further impetus to the implementation of the scheme and advancing the goal of housing for all in urban areas. The decision was taken at the 9th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee held in New Delhi on Thursday. The Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana has completed 7 years today. The scheme was launched on this day in 2019 with the aim of providing social security to small and marginal farmers. Under the scheme, eligible landholding small and marginal farmers are assured a minimum monthly pension of 3,000 rupees from the age of 60. More from our correspondent.
14: Since its launch, Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana has emerged as an important pillar of the social security for the farming community. Over these 7 years, the scheme has steadily expanded its reach among farmers across the country. It reflects the government's continued commitment to ensuring that farmers can look towards their later years with greater financial security and dignity. By February 2026, over 24.96 lakh farmers have enrolled under the scheme across the country. Haryana state leads with around 5.75 lakh enrollments, followed by Bihar with over 3.46 lakh. Since 2019, more than 540 crore rupees has been utilized to support the scheme's implementation and outreach as of February 2026. It brings the promise of financial security closer to millions who spend their working lives securing India's food security. Shivam Mishra, Akashwani News, Delhi.
12: This is Akashwani giving you the news.
15: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
12: Welcome back to Morning News on Akashwani. Saudi Arabia said it has shut down a major cross-country oil pipeline a day after it was attacked by drones. The statement by country's Ministry of Energy said the decision was taken to shut down oil pipeline as a precautionary measure. The East-West pipeline has played a key role in Saudi Arabia's ability to continue exporting oil following the disruption of the Strait of Hormuz during Iran's war with the US and Israel. A report.
9: The Saudi Foreign Ministry blamed the attack on several drones that came from Iraq. The Iraqi government condemned the assault and ordered an investigation. The shutdown comes as Iranian-backed Houthi rebels in the Yemen captured port of Mocha and a strategic island of Perim in the Bab el-Mandeb Strait at the southern entrance of the Red Sea, opening a new front in the ongoing West Asia conflict. The Bab el-Mandeb Strait is one of the world's key shipping lanes. The advance could boost Iran's strategy of driving up the world oil and gas prices to pressure the United States. On the other hand, the 1,200-kilometer pipeline shut down by the Saudi Arabia is the key alternative route for Kingdom's oil to reach global markets. Bypassing the Strait of Hormuz, it has been shipping 4 million to 5 million barrels per day in recent months, amounting to 4 to 5% of global supply. With Vishal's report, Chigasa Pandey from Newsdesk.
12: Amid the worsening flood situation in Uttar Pradesh, the state government has stepped up relief and rescue operations to assist affected families. At least 25 districts are currently affected by flooding following heavy rains and the release of water from dams. Our correspondent has the details.
10: According to the State Relief Commissioner's Office, around 8,000 people were shifted to safe locations on Thursday alone, taking the total number of evacuated people to around 21,000. Affected people are also being provided safe shelter, with around 3,000 individuals currently staying in relief camps. Keeping in view the risk of disease outbreaks during floods, the Health Department has also remained fully active. A total of 1,165 medical teams have been deployed in affected areas. Meanwhile, intermittent rain continues in many districts of the state, including the state capital Lucknow. The Meteorological Department has predicted rain with thunder and lightning in the eastern and western part of the state in the next 5 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
12: In Odisha, heavy to very heavy rain is likely at isolated places over southern part of the state today. The weather system over the Bay of Bengal is likely to sustain enhanced rainfall activity across Odisha. More from our correspondent.
16: Heavy to very heavy rainfall is likely at isolated places over southern Odisha today. The India Meteorological Department has issued an orange warning for Nabarangpur, Koraput and Malkangiri, where very heavy rain is expected at one or two places. Heavy rainfall is also likely over Nuapada, Balangir and Kalahandi. Several districts including Raigada, Gajapati, Ganjam, Kandhamal and Malkangiri may experience thunderstorms, lightning and gusty winds. IMD has advised people to remain alert, particularly in vulnerable and low-lying areas. Fishermen have also been advised to exercise caution as weather conditions along the Odisha coast are likely to remain rough at times. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
12: The India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy rainfall accompanied by thunder squall for coastal Andhra Pradesh today. According to the IMD, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra and Chhattisgarh during the day. On to sports. In hockey, Indian women's team will take on South Korea in the first semi-final of the Junior Asia Cup at Mochi in China this morning. The match is scheduled to begin at 9:45 a.m. Indian Standard Time. Defending champions India stormed into the last four with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in their quarter-final match. India topped the elite pool A with an impressive unbeaten record, earning 10 points from three dominant victories and one hard-fought draw. Host China will face Japan in the second semi-final at Mochi. In women's cricket, India will face defending champion Sri Lanka in the summit clash of T20 Asia Cup in Dubai tomorrow. Sri Lanka stormed into the final last night, defeating Pakistan by 4 wickets. Chasing a target of 131, Sri Lanka overhauled the score in 18.4 overs, posting 134 runs for the loss of 6 wickets. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
17: Thank you, Anuja. The dailies today have highlighted India's readiness to help bring peace with diplomacy being the only way forward as world leaders arrive for the BRICS summit. The Pioneer headline says, a warm embrace and a tough message. The Tribune writes, Modi presses Putin for Ukraine peace, safety of Indian seafarers in Black Sea. Building economic bridges during the BRICS summit in the national capital, the Indian Express states, grouping looks at pragmatic cross-border payment mechanism, local currency trade. AI cancer screening among 37 innovations on display in BRICS Bharat Innovates after making its debut in France, writes the Indian Express. Hotels see rise in advance bookings for destination weddings within the country after PM emphasized on travelling domestically, cites the Economic Times. And finally, India's BRICS hamper serves up culture, cuisine and convenience, containing Bihar's sattu and makhana, Odisha's coffee, focusing on vocal for local, notes the pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
12: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affects 25 districts. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
18: Akashwani ka ye Ranchi kendra hai. थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
19: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
20: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
19: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
21: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ बहू पेट से है ना, तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
22: ये तो खुशी की बात है, गर्भ में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे इसके लिए समय समय पर बहू की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
21: मैंने बहू का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
23: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
21: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य लें।
24: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
25: माँ बनना कोई बीमारी है क्या? तो 100 दिन तक रोज ही दवा लूँ।
26: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
27: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
26: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
27: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
26: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या?
28: वो भी तो 2 जान संभाल रही है।
26: बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
24: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
29: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय योजनाओं की दोहरी सफलता, पीएम आवास योजना शहरी के तहत 18,77,000 नए मकानों को मंजूरी, पीएम किसान मानधन योजना के पूरे हुए 7 वर्ष, राज्य में कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की पहल, हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और प्रत्येक प्रखंड में बनेंगे सरकारी गोदाम, राज्य में भ्रामक दावों और मिस लेबलिंग पर हुई बड़ी कार्रवाई, 115 फूड प्रोडक्ट्स पर बिक्री पर रोक, स्टॉक वापस लेने के निर्देश, राज्य में आज भी सक्रिय रहेगा मॉनसून, राजधानी रांची सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना, और राज्य खेल निदेशालय का बड़ा फैसला, 493 खिलाड़ियों को मिलेगी 4.5 करोड़ रुपए की मान राशि, खिलाड़ी पेंशन योजना का होगा व्यापक प्रचार प्रसार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में हुई केंद्रीय स्वीकृति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। आवास मंत्रालय ने राज्यों से इसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू हुई यह योजना देश के लघु और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा देती है। एक रिपोर्ट।
9: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुंच बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
29: रांची के प्रेस क्लब में झारखंड समग्र विकास के लिए संसाधन विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केवल बजट बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास का मूल्यांकन उसके सामाजिक प्रभाव और मानव विकास से होना चाहिए।
0: सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या व्यापारी जगत के लोग हो, हर व्यक्ति के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि झारखंड को आगे लेकर जाए। कोयले का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इलीगल, तो इस पर अब वित्त विभाग, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट काफी कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। स्टेट का ओन रेवेन्यू और नॉन ओन रेवेन्यू दोनों मिलाकर के 60,000 करोड़ रुपया की प्राप्ति होती है। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको अपने पैरों पर 1,00,000 करोड़ रुपया करें।
29: राज्य की कृषि एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हाउस में कृषि योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हर विधानसभा में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और प्रत्येक प्रखंड में बेहतर सरकारी गोदाम बनाने का निर्देश दिया। बैठक में स्कूलों में रागी आपूर्ति और लह उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
1: इस वर्ष की सबसे एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इस साल के बजट में लिया था, वो है हर एक विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज कम मार्केटिंग सेंटर, और इसका डीपीआर हम लोग लगातार अलग अलग कंसल्टेंसी से मंगा रहे हैं। ने निर्देशित किया है विभाग को कि जल्द ही देश भर के बेहतरीन लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, उनको भी कंसल्टेंसी के रूप में बुलाया जाए और उनसे भी सुझाव लिया जाए।
29: रांची में एनएचएम झारखंड द्वारा सिकल सेल थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों के लिए राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने

0: एआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि वह परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार को छिपा रही है। गोड्डा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने और छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे तुरंत वापस लेने की मांग की।
1: जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, इन 5-6 वर्षों में जितनी भी नियुक्तियां हुई, गजेटेड हो चाहे नॉन गजेटेड, अधिकांश सर्विस को, नौकरी को बेच दिया और झारखंड के नौजवान संघर्ष करते रहे।
0: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। साथ ही श्री महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा डीएमएफटी फंड की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का आग्रह किया। जामताड़ा में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां एक ही मकान नंबर पर अलग अलग समुदायों के 54 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एईआरओ और ईआरओ को जांच के आदेश दिए हैं।
2: एईआरओ और ईआरओ को जांच का आदेश दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। जो भी हम लोग ड्राफ्ट रूप प्रकाशित किए हैं, इसमें सारे हमारे बूथ लेवल एजेंट्स और पार्टियों के बीएलएस को भी सूचित किया गया है, ताकि जो ये मामला संज्ञान में आया है उसमें हम लोग जांच करा रहे हैं। अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो जो भी संबंधित लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
0: दुमका जिले के तसर कीट पालक शंभुनाथ देहरी को रेशम उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेस्ट सेरिकल्चर स्टेक होल्डर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। शंभुनाथ ने कीटों को बचाने के लिए विशेष देसी स्टिकी ट्रैप तकनीक विकसित की है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। मौसम। राज्य में मॉनसून के सक्रियता के बीच आज राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। राज्य में पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन और सम्मान राशि देने के लिए खेल निदेशालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई। समिति ने 493 खिलाड़ियों को करीब 4.5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की अनुशंसा की है। वहीं खिलाड़ी पेंशन के लिए केवल 2 आवेदन ही योग्य पाए गए। आवेदन कम आने पर समिति ने इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने 18वें शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम के आयोजन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन पेजेश्कियान। दैनिक भास्कर ने लिखा है, एसआईआर के तहत राज्य के 4006 वोटरों पर संदेह, आयोग ने दिया जांच का आदेश। प्रभात खबर लिखता है, पोप से मिले आर्च बिशप, दिया न्योता। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सीजीएल केस में कोडरमा के 2 संदिग्ध और 28 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय योजनाओं की दोहरी सफलता, पीएम आवास योजना शहरी के तहत 18,77,000 नए मकानों को मंजूरी। पीएम किसान मानधन योजना के पूरे हुए 7 वर्ष। राज्य में कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की पहल, 6 विधानसभा, हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और प्रत्येक प्रखंड में बनेंगे सरकारी गोदाम। राज्य में भ्रामक दावों और मिसलेबलिंग पर हुई बड़ी कार्रवाई, 115 फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक, स्टॉक वापस लेने के निर्देश। राज्य में आज भी सक्रिय रहेगा मॉनसून, राजधानी रांची सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना। और राज्य खेल निदेशालय का बड़ा फैसला, 493 खिलाड़ियों को मिलेगी 4.5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। खिलाड़ी पेंशन योजना का होगा व्यापक प्रचार प्रसार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज के माटी की महक के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संथाली लोकगीत। कलाकार हैं सोना मुर्मू और उनके साथी।

सोना मुर्मू और साथियों के स्वर में गाए इस संथाली लोकगीत के साथ ही श्रोताओं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब कार्यक्रम विविधा के साथ मैं हूँ निशा।

0: आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से प्रसारित इस विविधा कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस विविधा कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। दोस्तों, यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2026 में यह दिवस इस बार 12 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, सड़क पर अचानक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति सीढ़ियों से गिर जाता है, किसी का हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है, या अचानक किसी को बेहोशी आ जाती है। ऐसे समय में हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि अब क्या करें। अस्पताल तो जाना ही है, डॉक्टर को भी बुलाना है, लेकिन डॉक्टर या एम्बुलेंस के पहुंचने तक जो तत्काल और सही सहायता हम घायल या बीमार व्यक्ति को देते हैं वही कहलाती है प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। श्रोताओं, प्राथमिक चिकित्सा केवल पट्टी बांधने या दवा लगाने का ही नाम नहीं है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जिसे सीखकर हम आपात स्थिति में किसी की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर के महीने के दूसरे शनिवार को विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य है लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक लोगों को इसके बुनियादी तरीकों के प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना है। श्रोताओं, दुर्घटना कभी समय देखकर नहीं आती, वह घर में हो सकती है, सड़क पर हो सकती है, खेत में हो सकती है, स्कूल में, कार्यालय में या किसी सार्वजनिक स्थान पर भी हो सकती है। ऐसे समय में हमारी पहली प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि हमें सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई दुर्घटना हुई है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि घटना स्थल हमारे और घायल व्यक्ति के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए हमें फोन करना चाहिए। यदि व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है तो उसे अनावश्यक रूप से उठाने या खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि विशेषकर यदि रीढ़ या गर्दन में उसके चोट की आशंका हो तो हमें यह काम और भी नहीं करनी चाहिए। और श्रोताओं, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सामान्य परिस्थितियों की जिसमें कि फर्स्ट एड हमारे लिए बहुत काम आ सकती है, जैसे कि रक्तस्राव होने पर। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा है तो साफ कपड़े या गाज के घाव पर सीधा और लगातार दबाव देना बहुत ही जरूरी हो सकता है। घाव में फंसे किसी वस्तु को स्वयं निकालने की कोशिश तो कभी नहीं करनी चाहिए। अगर खून बहुत अधिक बह रहा है या लगातार जारी है तो तुरंत चिकित्सा सहायता हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत अत्यधिक रक्तस्राव एक गंभीर आपात स्थिति हमारे लिए पैदा कर सकती है। जलने पर श्रोताओं हम क्या करें? रसोई में काम करते समय गर्म पानी, तेल या आग से जलने की घटनाएं अक्सर होती है या हो सकती है। ऐसी स्थिति में जले हुए स्थान को ठंडे बहते पानी के नीचे लगभग 20 मिनट तक ठंडा करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण तरीका है दोस्तों। लेकिन बर्फ सीधे त्वचा पर नहीं लगानी चाहिए। जलनी वाली जगह पर टूथपेस्ट, घी, तेल या घरेलू नुस्खे भी लगाने से हमें बचना चाहिए। अगर जलना गंभीर है, चेहरे, हाथ, पैर या जनन अंगों पर है तो व्यक्ति की हालत चिंताजनक है, तो हमें तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। अगर बेहोशी की स्थिति हो, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसे भीड़ से घेरने के बजाय अस्पताल आसपास की जगह में खुली रखें। और सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं, सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है या तो हमें तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलानी चाहिए। यदि आपको CPR का प्रशिक्षण है या जानकारी है तो आप प्रशिक्षित तरीके से CPR देना शुरू कीजिए। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि CPR जैसी तकनीकी सही प्रशिक्षण से सीखना सबसे बेहतर है। अगर किसी के हड्डी फ्रैक्चर हो जाए या गंभीर चोट लग जाए तो घायल हिस्से को अनावश्यक रूप से हमें हिलाने डुलाने से बचना चाहिए। उसे सीधा करने या हड्डी को अपनी जगह बैठाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घायल व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने की प्राथमिकता सबसे पहले होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ दोस्तों यह नहीं है कि हम डॉक्टर की भूमिका निभाने लगें। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है स्थिति को बिगड़ने से रोकना और चिकित्सा सहायता मिलने तक व्यक्ति को सुरक्षित रखना। इसलिए बिना जानकारी के किसी को दवा देना, जबरदस्ती पानी पिलाना या बेहोश व्यक्ति के मुंह में कुछ डालना उचित नहीं है। विशेष रूप से बेहोश व्यक्ति को खाना या पानी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उसके सांस की नली में खाद्य पदार्थ जाने का खतरा हो सकता है। इसी तरह सड़क दुर्घटना में भी घायल व्यक्ति को केवल भीड़ के दबाव में तुरंत उठाकर बैठा देना भी सही नहीं होता है दोस्तों। हमें लोगों की मदद करनी है लेकिन सही तरीके से। प्राथमिक चिकित्सा किट क्यों जरूरी है दोस्तों? हर घर, स्कूल, कार्यालय, वाहन और सामुदायिक केंद्र में एक छोटी फर्स्ट एड किट रखना बहुत ही उपयोगी और जरूरी होता है। इसमें सामान्यतः साफ गौज, पट्टियां, चिपकने वाली पट्टी, दस्ताने, एंटीसेप्टिक वाइप्स जैसी जरूरी सामान रखे जा सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में रखे वस्तुओं की समय समय पर हमें जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुएं समाप्त हो चुकी है और या पुरानी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो हमें उसे बदल देना चाहिए। केवल फर्स्ट एड बॉक्स रखना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। दोस्तों कभी कभी हम सोचते हैं कि दुर्घटना होने पर कोई दूसरा व्यक्ति मदद कर देगा, लेकिन सोचिए अगर उस समय आपके आसपास कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी जानकारी है तो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए पहला कदम जरूर उठा सकते हैं। और आज का दिवस हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। प्राथमिक चिकित्सा सीखनी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी सही कोशिश किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है। इसलिए इसके साथ और एक बात जरूर याद रखें कि आपात स्थिति में सही समय पर सही जगह पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संपर्क करनी चाहिए और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह लेनी चाहिए। हमें बच्चों और युवाओं को भी प्राथमिक चिकित्सा की ज्ञान देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान केवल बड़ों तक सीमित ही नहीं होना चाहिए, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, बच्चों और युवाओं को भी फर्स्ट एड और CPR का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए। युवा वर्ग दुर्घटना के समय सबसे पहले मदद करने वालों में शामिल हो सकता है। अगर समाज का अधिक से अधिक हिस्सा प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी रखेगा तो आपात स्थिति में हमारी क्षमता और भी बढ़ जाएगी। किसी दुर्घटना के बाद शुरुआती कुछ मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। उस समय हमारा शांत रहना, सही निर्णय लेना और प्रशिक्षित तरीके से सहायता करना बहुत हमारे लिए मायने रखता है। इसलिए आज विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, हम प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने घर और कार्यस्थल में फर्स्ट एड किट रखेंगे, आपात स्थिति में घबराने के बजाय पहले सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता बुलवाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना जानकारी के कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे घायल व्यक्ति की स्थिति और बिगड़ जाए। तो श्रोताओं, जीवन अनमोल है, किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी समय पर लगाया गया दबाव, सही तरीके से की गई सहायता, समय पर बुलाया गया चिकित्सीय सहयोग किसी की जिंदगी बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा को केवल एक दिवस तक ही सीमित न रखें, इसे अपने जीवन का एक जरूरी कौशल बनाएं। सीखिए, समझिए और जरूरत पड़ने पर सही तरीके से लोगों की मदद अवश्य कीजिए। और श्रोताओं, इसी संदेश के साथ विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर आप सभी को इसके जागरूकता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

और इस अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम विविधा में हम और एक महान के पुण्यतिथि पर बात करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे विलक्षण रचनाकार को जिनका साहित्यिक जीवन भले ही बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी रचनात्मक प्रतिभा ने हिंदी साहित्य पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था और 12 सितंबर 1922 को उनका निधन हुआ। अल्प आयु में ही उन्होंने हिंदी साहित्य, भाषा, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी विद्वता की विशिष्ट पहचान बनाई। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना केवल एक साहित्यकार को श्रद्धांजलि नहीं देना है, बल्कि हिंदी की उस समृद्ध परंपरा को नमन करना है दोस्तों, जिसमें ज्ञान और संवेदना का अद्भुत मेल दिखाई देता है। गुलेरी जी को हिंदी साहित्य में विशेष रूप से उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के लिए याद किया जाता है। हिंदी कहानी के इतिहास में उसने कहा था को एक मील का पत्थर माना जाता है। श्रोताओं, यह कहानी प्रेम, त्याग, कर्तव्य और मानवीय संवेदना की एक ऐसी कथा है जो अपने समय से आगे की रचना प्रतीत होती है। कहानी की शुरुआत बहुत सहज ढंग से होती है। बचपन में मिलने वाले दो पात्र लहना सिंह और एक लड़की, बचपन की वह मुलाकात आगे चलकर लहना सिंह के जीवन की एक गहरी स्मृति बन जाती है। समय बीतता है, जीवन अपनी दिशा बदलता है, लेकिन एक छोटी सी बात उसने कहा था लहना सिंह के मन में कहीं सुरक्षित रह जाती है और जब जीवन उसे उस वचन को निभाने का अवसर देता है तब उसके सामने प्रेम और कर्तव्य दोनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। श्रोताओं, यह केवल प्रेम कहानी नहीं, यह वचन निभाने, त्याग करने और अपने कर्तव्य के लिए स्वयं को समर्पित करने की कहानी है। उसने कहा था कि सबसे बड़ी विशेषता श्रोताओं उसकी भाषा और कथन शैली है। गुलेरी जी ने बहुत ही कम शब्दों में पात्रों के मनोभावों को सामने रखा। कहानी में संवाद बहुत ही स्वाभाविक है। पात्र हमारे आसपास के जीवन से जुड़े हुए लगते हैं। उनके सुख दुख, उनकी स्मृतियां और उनकी भावनाएं हर पाठक के मन को छूती है। आज यही कारण है कि एक सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह कहानी पाठकों के मन में आज भी जीवित है। गुलेरी जी की रचनात्मकता की विशेषता यही थी कि वे साधारण घटनाओं में भी असाधारण मानवीय भाव खोज लेते थे। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों कि जीवन में कही गई छोटी सी बात भी कभी कभी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी केवल कहानीकार नहीं थे, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान भी थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और अन्य भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व और भाषा विज्ञान जैसे विषयों में भी उनकी विशेष रुचि थी। उनकी विद्वता केवल पुस्तक ज्ञान से नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने, उसके विभिन्न पहलुओं को सामने लाने के लिए निरंतर अध्ययन और शोध करने का था। यही कारण है कि उनका साहित्य हमें केवल भावनात्मक अनुभव नहीं देता बल्कि हमारे ज्ञान के संसार को भी और विस्तृत करता है।
गुलेरे जी का जीवन हमें एक संदेश देता है दोस्तों। वह संदेश है, प्रतिभा को समय की लंबाई की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य कितने वर्ष जीवित रहा यह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसने अपने जीवन में क्या सृजित किया। गुलेरे जी का जीवन अपेक्षाकृत छोटा रहा, लेकिन उन्होंने साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया वह उनके जीवन काल से कहीं अधिक लंबा साबित हुआ। आज भी जब हिंदी कहानी के विकास की चर्चा होती है तो उसने कहा था का नाम आदर के साथ लिया जाता है। आज भी विद्यार्थी इस कहानी को पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा था और आज आने वाली पीढ़ियां भी इस कहानी को पढ़ेगी। आज भी साहित्य के अध्येता इसके पात्रों, भाषा और संवेदना का अध्ययन करते हैं और आज भी लहना सिंह का त्याग पाठकों के मन को भावुक करता है। श्रोताओं, किसी महान व्यक्तित्व के पुण्यतिथि को याद करने का यह एक केवल अवसर नहीं है बल्कि आत्मचिंतन का भी एक अवसर होता है। गुलेरे जी की रचनाओं से हमें संवेदनशीलता, वचनबद्धता और मानवीय मूल्यों के महत्व को समझने का समय मिलता है। आज के तेज भागते हुए जीवन में जब रिश्तों और भावनाओं के लिए समय कम होता जा रहा है, गुलेरे जी की कहानी हमें ठहर कर कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है। क्या हमारे शब्दों का कोई मूल्य है? क्या हम अपने वादों को निभाने का साहस रखते हैं? क्या हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं? और क्या हम अपने कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं? उसने कहा था, इन प्रश्नों का उत्तर सीधे नहीं देती, लेकिन हमें अपने भीतर झांकने के लिए जरूर प्रेरित करती है। आज पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुण्यतिथि पर हमें उन्हें श्रद्धापूर्वक सम्मान नमन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दोस्तों, उनका साहित्य हमें याद दिलाता है कि अच्छी रचना केवल कहानी नहीं होती है, वह समय से संवाद करती है, आने वाली पीढ़ियों से बात करती है, मनुष्य के भीतर संवेदना को जगाए रखती है। तो गुलेरे जी की साहित्य ऐसी ही थी। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे आज उनके पुण्यतिथि पर और अब सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है और अब श्रोताओं सुनवा रहे हैं आपको फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन।

कार्यक्रम रस रंजन का पहला गीत सुनवा रहे हैं श्रोताओं, दिल अपना और प्रीत पराई से, लता मंगेशकर का गाया।

0: दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम था दिल तुझको दिया। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन।
1: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
9: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
8: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन और आपको सुनवा रहे हैं हम ये गीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर। और अब चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रद्धा पंडित का गाया फिल्म ये जिंदगी का सफर का ये गीत।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और आप श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं और कुछ बॉलीवुड फिल्मी गीत।

उदित नारायण और महालक्ष्मी का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दिल से। गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत दिया था एआर रहमान ने। और अब सुनवा रहे हैं आपको अगला गीत।

फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। और अब सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

अल्ताफ राजा को आप सुन रहे थे फिल्म कंपनी में। गीत लिखा था ताबिस रोमानी ने और संगीत दिया था संदीप चौटा ने। और कार्यक्रम को यूं जारी रखते हुए श्रोताओं सुनते हैं अब हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

सैम भट्ट का गाया फिल्म क्रिएचर 3D के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। आपके साथ थे हमारे सहयोगी विनोद कुमार। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण में आप सुनेंगे जोहार रांची।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और विनोद जी साथ साथ आपका भी स्वागत है। तो
1: आपका भी स्वागत और आवाज की बिल्कुल
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए
1: और आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों का भी स्वागत है इस कार्यक्रम
0: तो
1: में।
0: हम दोनों के तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार जोहार
0: जोहार। तो आज हम घर से निकलते हैं विनोद जी, तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहते हैं ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे मौके ही बड़े सफलताओं की नींव बनते हैं।
1: बिल्कुल, और जिसने इस पद्धति पर फोकस किया, अपने आप को केंद्रित किया, इतिहास गवाह है कि उसने क्या कुछ रच डाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। वाकई ये शक्ति तो, हाँ
1: सही बात है कि ये जो इस तरह के जो संगीत होते हैं कहीं ना कहीं आपको ऊर्जान्वित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आप में
0: देते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी है। ऐसा आपको भी लगता होगा विनोद जी, आप ऑफिस में रहते होंगे, जहाँ भी जो हमारे आसपास के लोग हैं। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़े और कुछ स्वास्थ्य, आजकल बारिश का मौसम है।
1: बिल्कुल, और कहने को है कि लोग उम्मीद कर रहे थे, यहाँ तक कि मौसम विज्ञान विभाग की भी उम्मीद थी कि 10 तारीख तक मोटा मोटी बारिश जो है ये इस तरह से मानसून की वापसी हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर जो बंगाल की खाड़ी में अगर देखें, जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, तो एक बार फिर दो चार दिनों से आप देख रही हूँ कि बारिश हो रही है। बारिश क्या मतलब कि मूसलाधार भी बारिश हो रही है। और पूर्वानुमान की ही एक बार अगर बात करें तो अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, जो धूप और छाँव का खेल है ये चलता रहेगा, और आज भी हल्की से मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है झारखंड के कई क्षेत्रों में।
0: वो बिल्कुल सही बात कहा आपने विनोद, लेकिन आपने एक चीज गौर किया है कि बारिश होने के बावजूद गर्मी भी है, पसीने भी आते हैं। तो इस स्थिति पे हम आगे बात करेंगे, अपने श्रोताओं के साथ भी चर्चा करेंगे। फिलहाल श्रोताओं को सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस गाने में कितना अच्छा संदेश था कि मधुबन खुशबू देता है, लेकिन अभी जो अभी गाना सुनाने के पहले हमने जो कहा था कि बारिश के मौसम के बावजूद जो गर्मी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है विनोद की प्रकृति से हम लोगों ने जो छेड़छाड़ करी है और वो अब मधुबन खुशबू देने वाला मधुबन हम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं कम कर दिया है, छोड़ा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल आपका सही कहना है। अगर आज की बात नहीं है, जैसे जैसे मतलब कि हमारे देश और दुनिया की आबादी बढ़ती गई और विकास के कार्य होते गए, तो आप देख रहे हो कि नदियां जो हैं वहाँ भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो शहर के बीच जो नाले हैं उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो उसका कैचमेंट एरिया है वो बंद कर दिया जा रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। और सही बात है कि यह कहा जा रहा है कि जितने जो भी परियोजनाएं हैं अगर पेड़ कटते हैं तो फिर एक जो कॉन्सेप्ट है क्षतिपूर्वक वन रोपण का,

0: लेकिन देखना ये हुआ कि मान लीजिए कि आप 1,00,000 पेड़ काट डालती हैं और फिर 1,00,000 पौधे आप लगाती हैं,
1: तो पेड़
0: लेकिन
1: बनने
0: लेकिन
1: में
0: बिल्कुल
1: वर्षों
0: बिल्कुल
1: लग जाते हैं।
0: बिल्कुल। और यही वजह है कि आप देख रही होंगी कि पूरा जो पूरी दुनिया हमारी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के
1: झेल रही है। अभी नेपाल की त्रासदी कहीं ना कहीं उसी का एक नमूना था, एक सैंपल था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि अगर अभी भी हम न चेतें तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, और जिस तरह से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं कहीं न कहीं
1: स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है।
0: बिल्कुल। और हाल में जो आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो एक सर्वे रिपोर्ट आई है
1: जी, जी।
0: कि वहाँ पॉल्यूशन की बात हो रही है कि किस तरह से कहीं ठीक है उतार चढ़ाव उसमें चलता रह रहा है, लेकिन अगर औसत देखा जाए तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन बढ़ा है और ये कहीं न कहीं इसी का नतीजा है जो हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ।
1: चलिए ये तो खैर ये गलती हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें चेतने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अच्छा आप बता रहे थे आप कहीं अभी बारिश का मौसम है और आप कह रहे थे आप फॉल घूमने गए थे।
0: बिल्कुल। और ये भी है कि देखिए प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, सारा कुछ दिया है, चाहे भोजन की बात हो
1: जी,
0: या फिर
1: जी,
0: रहने की बात हो,
1: पानी,
0: बिल्कुल घूमने की बात हो
1: जी।
0: तो मैंने आपने सही कहा कि हाल ही
1: में यहाँ
0: जो बिल्कुल
1: घूमने की जगह है
0: और बहुत सारे फॉल्स भी हैं, और खासकर जो दशम फॉल है, मैं दशम फॉल की बात कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो हमारे खासकर जो रांची क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला है वो, और जो कांची नदी से वो गिरता है करीब 144 फीट ऊपर से वो गिरता है।
1: तो इस बारिश के मौसम में आपको डर नहीं लगा?
0: बिल्कुल। एक बात है कि देखिए अगर आप प्रकृति के करीब जाना चाहती हैं तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसका आनंद उठाती
1: जी,
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर मान लीजिए कि कोई उस 144 की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर
1: जी।
0: अगर आप उसके नीचे जाती हैं तो नीचे से खतरनाक है, लेकिन सरकार ने वहाँ बहुत सारा व्यू पॉइंट बनाकर रखा है जहाँ से आप उसका लुत्फ उठा सकती हैं, और बहुत ही विहंगम दृश्य खासकर बरसात के समय में
1: चारों तरफ हरियाली,
0: बिल्कुल जलप्रपात का हो जाता
1: बिल्कुल।
0: है
1: और वो आवाज पानी की जो गिरती होगी कलकल वो कुछ ज्यादा ही
0: बिल्कुल
1: प्यारी आवाज।
0: और जो मैं व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ आप रहेंगे तो जो पानी की जो फुहारे हैं
1: वो आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही मनोरम दृश्य के साथ साथ बड़ा ही अच्छा महसूस किया होगा आपने तो।
0: बिल्कुल। और वहाँ से आप आगे बढ़ जाएं तो वहीं रिमिक्स फॉल है, उधर फिर हुंड्रू फॉल है, सीता फॉल है, मतलब जोना फॉल, ढेर सारे फॉल है, तो आप जा सकते हैं और वहाँ आनंद उठा सकते हैं।
1: मतलब आप ये कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को कि हम बरसात के मौसम में भी जा सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है।
0: बस बिल्कुल।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने हमारे श्रोताओं को। तो श्रोताओं आप भी फॉल जाइए और उसका आनंद उठाइए, और तब तक हम ये एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं आपको।

0: गीत कैसा लगा आपको विनोद जी? क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा निश्चित।
1: गीत और संगीत की ही कुछ दुनिया ही ऐसी है कि कौन ऐसा नहीं होगा कि
0: जिसे पसंद नहीं आएगा। तो कार्यक्रम का सिलसिला तो चलता रहेगा, एक छोटा सा विराम लेते हैं, विराम के बाद फिर हम कार्यक्रम का सिलसिला बढ़ाते हैं।
2: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
0: विराम के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है जोहार रांची में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची से कार्यक्रम जोहार रांची और आपके साथ मौजूद हैं मैं और विनोद। तो विनोद जी, हम बात कर रहे थे फॉल की और पर्यावरण की, तो क्यों ना अभी जो पर्यावरण और फॉल की बात कर रहे थे, मौसम की भी बात हमने की, तो अभी बरसात का मौसम है और बरसाती मौसम में स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे में हम अपने श्रोताओं को कुछ बता दें कि किस तरह से वो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। बारिश के नमी के कारण अभी सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार और पेट दर्द से जुड़ी परेशानियां भी बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में साफ पानी पिएं, बाहर का खाने से परहेज करें, घर का खाना को ज़्यादा तवज्जो दें और
1: बिल्कुल ताज़ा खाना खाएं।
0: बिल्कुल हाँ, ताज़ा खाना खाएं और साथ में उबला पानी पिएं। अगर घर में चाहे कहीं पर वो व्यवस्था ना हो, आपके घर में RO की होता है कि कुछ घरों में नहीं हो पाती हैं, तो पानी उबाल कर पिएं, भोजन को ढक कर रखें। इन छोटी छोटी तमाम छोटी लेकिन अहम बातों का ध्यान रखें तो शायद हम जो अभी बरसाती बीमारियां हैं इससे बच सकते हैं।
1: और जब भी कोशिश करें कि मौसम पूर्वानुमान, तो अभी देखा जाए तो मोबाइल पर हर घंटे दो घंटे पर मैसेज आता रहता है कि किस तरह की स्थिति कैसी होगी। अगर मान लीजिए कि भारी बारिश का अलर्ट है, वज्रपात होने वाला है, तो ऐसे में कोशिश करें कि अगर मतलब कि बहुत आवश्यकता ना हो तो
0: घर से ना निकले
1: और जब बाहर निकले तो व्यवस्था के साथ निकले, रेनकोट रखें अपने पास। और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे भाई हैं और चाहे
0: जो
1: किसान हैं, खासकर मतलब पेड़ के नीचे तो कतई
0: ना जाए, वो बारिश के मौसम में बिजली गिरने की संभावना रहती है ज्यादातर थोड़ा, तो उससे तो इन सब बातों का ध्यान रखें हमारे श्रोता बंधु। और इसी के साथ हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।
4: राम करे बबुआ हो

0: और अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों पे
1: बिल्कुल,
0: और देखते हैं कि देश दुनिया में आज के दिन कहाँ क्या घटनाएं घटी थी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आज की अगर हम बात करें तो 1940 में फ्रांस में विश्व प्रसिद्ध लास्का मुफा चित्रों की खोज हुई थी, जिन्हें मानव इतिहास की अत्यंत प्राचीन कलाकृतियों में माना जाता है। इसी तरह 1959 में सोवियत अंतरिक्षयान लूना 2 चंद्रमा तक पहुंचा था।
1: और 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर अपना ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। और आज ही के दिन 2013 में वॉयेजर एक मानव निर्मित पहला अंतरिक्ष यान बना, जिसने सौर मंडल की सीमा पार कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। तो इसके अलावा आज के दिन बहुत सारे हस्तियों के भी जन्म हुए हैं, हर दिन खास होता है, तो उसमें भी बताएं। आज 12 सितंबर को जन्म लेने वालों में प्रसिद्ध संगीतकार हैंस जीमर हैं, गायिका और अभिनेत्री जेनिफर हडसन का भी जन्म 12 सितंबर को ही हुआ था।
0: और आज के ही दिन बास्केटबॉल खिलाड़ी याओ मिंग और एक अन्य अभिनेत्री एमी रोसस का भी जन्म आज के दिन हुआ था।
1: बिल्कुल। अब इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं, जब हम खुशियां मनाते हैं ना, जन्म मनाते हैं, तो निश्चित है कि ये तो स्वाभाविक है कि आना जाना जन्म के साथ मृत्यु, तो क्यों ना हम बिल्कुल तो क्यों ना हम उसकी भी बातचीत कर लें, जानकारी दे दें अपने श्रोताओं को। तो 12 सितंबर 1977 को दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता स्टीव बीको का पुलिस हिरासत में निधन हुआ था। और आप और क्या कहना चाहेंगे आज दर्शकों को? चलिए दर्शकों को अब ज्यादा बातचीत ना करें, पहले उनको एक सुनाते हैं प्यारा सा गीत, फिर हम करते हैं चर्चा।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: ये गाना सुनकर आपने कैसा महसूस किया?
1: बिल्कुल, और देखा जाए तो सही बात है कि एक दूसरे के ही अगर इस पद्धति पर और इस पर चले तो पूरी दुनिया ही हम कह सकते कि इसी पे आश्रित है। और
0: हाँ नहीं, वो तो आश्रित है, मेरे कहने का मतलब था आजकल हम रिश्तों की बात जो करते हैं ना, बिल्कुल हम दूर होते जा रहे हैं अपने आप में, मोबाइल की दुनिया में, अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये गाना सुन के थोड़ा वो एहसास नहीं होता है कि
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और जहाँ तक अभी बतला है, आपने कहा है कि किस तरह से दूरियाँ बढ़ रही हैं और खासकर इसमें जो मोबाइल की बात हो रही है कि मोबाइल किस हद तक मतलब कि हमें एक दूसरे से दूर कर रहा
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: हम बगल में ही बैठे रहते हैं, कई कार्यक्रमों में भी आप देख रही होंगी कि एक साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सभी के सभी लोग मोबाइल पे ही
0: व्यस्त रहते हैं
1: खासकर। और सबसे जो चिंताजनक स्थिति है वो अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की भी देखिए स्क्रीन टाइम पर उनका इतना समय जाता है, बच्चों को सोने के समय तक स्क्रीन जो कहा जाता है कि बच्चों को तो एक तो मोबाइल से आप दूर ही रखें।
0: बिल्कुल।
1: और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं और कई से ऐसे मतलब कि रिसर्च भी आ चुके हैं कि मोबाइल हमें किस हद तक परेशान कर रहा है, हमें नींद की बीमारी हो रही है और भी बहुत सारी ये हो रहा है कि हम सही समय पर सो नहीं रहे हैं, सही समय पर जाग नहीं रहे, पूरा रूटीन आप देखेंगे पूरी तरह से एकदम डिस्टर्ब हो गया है। और
0: पता है विनोद जी, लेकिन डॉक्टर्स के चेतावनी के बावजूद हमने देखा है कि आजकल की खासकर मैंने महिलाओं को देखा है कि वो छोटे छोटे बच्चों को, अब बच्चे परेशान ना करें इसके लिए वो मोबाइल पकड़ा देती हैं, दो छह महीने एक साल के बच्चों को, कि बच्चा उसमें व्यस्त रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये मोबाइल पकड़ाना थोड़ी देर का सुकून भविष्य के लिए, कहीं उनके सर का दर्द ना बन जाए, इस बात से उनको सावधानी बरतनी होगी, उन्हें चेतना होगा।
1: और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ हम बच्चों की बात न करें, आप
0: बड़ों की भी,
1: बड़ों की बात करें। और अक्सर आप देख रही होंगी इधर खासकर आपने समाचार पत्र में बहुत सारी इस तरह की खबरें पढ़ी होंगी कैसे मतलब कि जो हमारे किशोर हैं, हमारे जो युवा वर्ग के साथी हैं, किस तरह से वो रील बनाने के चक्कर में और मोबाइल देखने के चक्कर में वो
0: अपनी जान को भी गंवा रहे हैं।
1: बिल्कुल, रेलवे ट्रैक पर चले जा रहे हैं, कोई नदी में गिर जा रहे हैं। कल ही की घटना है कि एक स्कॉर्पियो के साथ अपनी गाड़ी के साथ वो नदी में गिर पड़ा, हालांकि यह
0: आगरा
1: के लोगों ने उन्हें बचा लिया। हाल फिलहाल में एक और बहुत ही इस तरह की आप घटना देखी होंगी,
0: इस तरह की घटनाएं अक्सर आजकल आती हैं, खबरों में भी आती हैं देखने सुनने में, जो कि बहुत ही भयावह है इस तरह की घटना। इससे बचना चाहिए इस तरह की बुरी आदतों से। नशा सिर्फ हम वो शराब और गांजा ही नशा नहीं होता है, ये भी एक नशा ही है जो दिन पर दिन हमारे युवाओं को अपने गिरफ्त में लेते जा रहा है, जिसे बचना और युवाओं को निकलना बहुत ही जरूरी हो गया। और इसके लिए हमको लगता है घर वालों का तो सपोर्ट चाहिए ही कि भाई मोबाइल से दूर रहो, लेकिन युवाओं को भी खुद अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा।
1: बिल्कुल, और ये मनोविज्ञान की भी बहुत सारी इसमें बातें आती हैं कि आप कैसे उससे आप दूर रह सकती हैं, दूरी कैसे बना सकती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को किसी दूसरी चीज में इंगेज करें, खासकर मतलब जो पेरेंट्स हैं वो पहले अपनी आदतों में सुधार लाएं।
0: बिल्कुल।
1: और इसके बाद अगर मान लीजिए कि फिर भी स्थिति बहुत अगर विकट होती है तो आप जरूर मतलब कि मनोवैज्ञानिक की सलाह लें, वह भी समय रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अन्यथा बहुत कुछ आप खो देंगे
0: जी।

0: और अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब कुछ विज्ञान की बातें।
1: बिल्कुल
0: जी, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं? 2 दिल गलफड़ों तक रक्त पहुंचाते हैं जबकि तीसरा पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है।
1: अच्छा।
0: और मजेदार बात, तैरते समय उसका मुख्य दिल कुछ देर के लिए रुक भी जाता है।
1: नहीं, ऑक्टोपस के बारे में तो नहीं जानकारी थी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। लेकिन हाँ, मैं इंसान के दिल की बात बता सकती हूँ आपको। हमारा दिल दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है और यह बिना रुके हमारे शरीर के हर हिस्से तक रक्त पहुँचाने का काम करता है। दिल की यही निरंतर कार्यशैली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है।
0: और अब कुछ ग्रह की बातें, शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं। ये जो इसका 1 दिन होता है, 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। शुक्र को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 दिनों में यह पूरी कर लेता है।
1: अच्छा, चलिए, जब आपने वो बताई तो हम भी आपको ये बताना चाहेंगे कि बिजली जो चमकती है बारिश के समय, उसके बारे में कि बारिश के समय हम पहले बिजली चमकते हुए देखते हैं और कुछ देर बाद बादल की गड़गड़ाहट सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है और इसलिए चमक हमारी आंखों तक पहले पहुंचती है और आवाज बाद में। इसके अलावा एक बात और बताऊं, अंतरिक्ष के चारों ओर लगभग निर्वात होता है और ध्वनि को एक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस वस्तु। इसलिए अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जोर से चिल्लाए तब भी उसकी आवाज सामान्य तरीके से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है।
0: बिल्कुल, और सही है, और इसी से मैं इसे कोरिलेट आउट कर रहा हूं कि आपने जैसा कहा कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि आवाज को यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि अंतरिक्ष लगभग निर्वात है। इसलिए फिल्मों में अंतरिक्ष में होने वाले धमाकों की आवाज वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होती।
1: जी जी जी।
0: और एक और बात, मानव शरीर में डीएनए की लंबाई बेहद विशाल है। अगर एक इंसान की सभी कोशिकाओं के डीएनए को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई इतनी अधिक होगी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी से भी कई गुना ज्यादा होगी।
1: जी जी जी, बिल्कुल। आपने सूर्य की बात की तो बता दूं कि सूरज की किरणें धरती तक तुरंत नहीं पहुंचती। सूर्य से निकलने वाली रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, यानी हम सूर्य को भी वैसा देखते हैं जैसा कुछ मिनट पहले था। और हम इंसानों की बात किए, हमने अंतरिक्ष की बात की, तो क्यों ना थोड़े पौधों की भी बात कर लें। पौधों के पास हमारी तरह आंखें और कान नहीं होते, लेकिन वे अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। सूरज की रोशनी की दिशा में बढ़ना, पानी की ओर जड़ों का फैलना और कुछ पौधों को आपने देखा होगा विनोद जी, छूने पर वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो वो प्रतिक्रिया करना प्रकृति के अद्भुत वैज्ञानिक का उदाहरण है। और बात करें, हाँ बोलिए।
0: जब आपने पौधों की बात की तो मैं फल की बात कर रहा हूँ।
1: जी बिल्कुल,
0: केले की बात कर
1: रहा
0: हूँ।
1: केले
0: थोड़े रेडियोधर्मी होते हैं।
1: जी,
0: केले
1: जी।
0: में प्राकृतिक रूप से पोटेशियम 40 पाया जाता है जो रेडियोधर्मी होता है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी कम होती है कि सामान्य मात्रा में केला खाना सुरक्षित है।
1: जी बिल्कुल। तो अब हम इसकी भी जानकारी आपको दे दें कि देखिए, विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं, मोबाइल फोन, इंटरनेट, बिजली, रेल, विमान, चिकित्सा, टीवी और रेडियो, जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे जीवन का लगभग हर हिस्सा विज्ञान से जुड़ा है। विज्ञान ने दुनिया को केवल सुविधाजनक ही नहीं बनाया बल्कि हमें प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का अवसर भी दिया है।
0: बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि विज्ञान सिर्फ किताबों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास की दुनिया में कदम कदम पर विज्ञान छिपा है।
1: बिल्कुल,
0: बस जरूरत है उसे थोड़ा गौर से देखने की।
1: बिल्कुल।

0: और अब बात खेल जगत की, तो हम आपको बता दें कि श्रीलंका ने महिला एशिया कप T20 के सेमीफाइनल में शुक्रवार को यहां पाकिस्तान को 7 गेंद शेष रहते 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इसी तरह अगर हम पुरुष एशिया कप की बात करें तो शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान अनमोल इक्का के 2 गोल की मदद से गत चैंपियन भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर लगातार 4थी बार HF पुरुष जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
1: और एशिया कप की आपने बात की, तो एशियाई खेल की शुरुआत भी भारत से ही हुई थी और आपको तो जानकारी होगी कि 19 सितंबर से फिर से शुरू हो रहा है एशियाई खेल, जिसमें भारत की नज़र फिर से 100 से ज़्यादा पदकों पर जीतने की है। एथलेटिक्स स्पर्धा में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक अब तक जीते हैं एशियाई खेलों में। इतिहास में भारत में सबसे ज़्यादा पदक एथलेटिक्स में भारत को ही मिले हैं। 1951 में जब एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी तो भारत के लिए पहला पदक कांति शाह ने पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में जीता था। और 72 वर्षों के दौरान भारत के खाते में अब तक 779 पदक आए हैं। हालांकि एथलेटिक्स स्पर्धा में पिछले 72 वर्षों के दौरान भारत ने अब तक 85 स्वर्ण, 102 रजत और 96 कांस्य समेत कुल 283 पदक जीत चुके हैं।
0: और 27 सितंबर से अगर देखा जाए तो झारखंड में पहली बार राज्य सीनियर महिला फुटबॉल लीग 27 सितंबर से शुरू होगी। प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी BEDX वेंचर्स और क्रोसेडर्स फुटबॉल क्लब को दी गई है।

0: तो आज के जोहार रांची कार्यक्रम में अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रहा है, तो कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं
1: और कहते हैं जोहार नमस्कार।
0: जोहार नमस्कार।

0: स्कूल के लिए रेडी?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

चुपके चुपके सखियों के संग बातें करना भूल गई पंकज उदास की आवाज में अपना ये आपने ये गीत सुना। संगीत अली गोनी का था और गीत के बोल लिखे थे जमील मेहंदी ने। अब हम बात करें कुछ, अभी बरसात का मौसम है तो क्यों ना हम कुछ बारिश की बात करें। हम दोनों का साथ हो और हो रही बरसात हो, एक दूसरे से कुछ ना कहें बस बूंदों की बूंदों से बात हो। हम दोनों का साथ हो और हो रही बरसात हो।

मैं बूंदों से जो कुछ कहूँ तुम उनसे वह सब सुनो, मेरी प्रीत के मोती भी तुम उन बूंदों में से ही चुनो, तुम्हारी ओर से भी मेरे लिए कोई ऐसी ही सौगात हो, हम दोनों साथ हों और हो रही बरसात हो।

हम दोनों का साथ हो और हो रही बरसात हो, तेरे मुख पर पड़े जो फुहार व ठंडक मैं महसूस करूं, मेरे मन में हो रही तपन पर तुम भी एक आह भरो, चलते रहे ये मौन संवाद और हाथों में तेरा हाथ हो, हम दोनों का साथ हो और हो रही बरसात हो।

आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे खुशी क्षण पश्चात आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपकी अपनी पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। कार्यक्रम की आज के इस खूबसूरत सफर में आपके साथ हैं हम दो सखियां, मैं मधु
1: और मैं रानी। स्वीकार कीजिए बहनों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी और परिवार संग प्रसन्न भी, क्यों मधु?
0: बिल्कुल रानी, आज शनिवार है और कल रविवार, यानी पूरे सप्ताह की भागदौड़ के बाद थोड़ा सुकून, थोड़ा आराम और अपनों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका भी।
1: हाँ, और जब छुट्टी की बात हो तो हमारे मन में एक ख्याल तो जरूर आता है मधु कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। और मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात से सिर्फ तुम ही नहीं, हमारी बहुत सी बहनें भी सहमत होंगी और ये सुनकर मुस्कुरा भी रही होंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
0: हाँ हाँ, सिर्फ सहमत ही नहीं होंगी, कुछ बहनों ने तो शायद पहले से ही घूमने की योजना भी बना रखी होगी, मन ही मन जगह तय कर ली होंगी। और जिनकी योजना नहीं बनी है वे भी सोच रही होंगी कि कहीं दूर नहीं तो नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही शहर में कोई अच्छी जगह देखाते हैं, घूमाते हैं, है ना?
1: हाँ सही कहा मधु, किसी पार्क में परिवार के साथ बैठना, कभी किसी ऐतिहासिक जगह को देखना या फिर वापस अपने गाँव की गलियों में या पगडंडियों पर चलना, छोटी सी यात्रा भी मन को कितना हल्का कर देती है ना। और जब साथ अपने हो तो सफर का आनंद और भी बढ़ जाता है बहनों। रास्ते भर होने वाली बातें, हंसी मजाक, किसी अनजान जगह पर पहुंचकर वहां के खाने का स्वाद चखना, तो कहीं पर कुल्हड़ वाली चाय के लिए रुकना, कितनी सारी यादें बनती हैं ना मधु?
0: बिल्कुल।
1: और शायद इसलिए कहते हैं कि यात्रा की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं होती, रास्ते में मिलने वाली कहानियों में भी होती है।
0: सच बहनों, जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ की खूबसूरती के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा भी मिलता है जो हमें किताबों में नहीं मिलता। जैसे किसी जगह की गलियों में घूमते हुए वहाँ के लोगों की बोली सुनना, उनका पहनावा, उनकी खान पान का स्वाद, उनके त्योहार, उनकी परंपराएं, सब कुछ जानना।
1: हाँ बिल्कुल, किसी जगह को करीब से देखने से पता चलता है बहनों की हर क्षेत्र की अपनी एक खूबसूरत पहचान है। बहनों यात्रा सिर्फ आंखों को नए दृश्य नहीं देती बल्कि मन को भी नए अनुभव देती है और हमारी सोच का दायरा भी बढ़ाती है। और हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ यात्रा का मतलब है हर कुछ दूरी पर एक नई संस्कृति से परिचय।
0: सही कहा रानी तुमने, हमारा देश भारत तो विविधताओं से भरा हुआ है, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं समुद्र का किनारा है तो कहीं हरे भरे जंगल और मैदान। भौगोलिक विविधता के साथ यहाँ की संस्कृतियों में भी अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, पर कुछ दूरी पर भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, कहीं पहनावा तो कहीं त्योहार मनाने का तरीका भी बदल जाता है।
1: हाँ मधु, लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि इतनी विविधताओं के बावजूद लोगों की भावनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं। जैसे माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, परिवार को साथ लेकर चलने की भावना, त्योहारों में खुशियां बांटना, ये भाव तो हर जगह दिखाई देते हैं ना, बस उन्हें व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है बहनों। हर संस्कृति की अपनी पहचान, अपनी कहानी है।
0: और बहनों, जब हम यात्रा करते हैं तो उन कहानियों को और भी करीब से समझ पाते हैं, हमें पता चलता है कि किसी जगह की परंपरा केवल रीति रिवाज नहीं होती बल्कि उसके पीछे वहाँ के लोगों का इतिहास, जीवन और अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे अपने झारखंड की बात करें तो यहाँ की संस्कृति में प्रकृति का बहुत गहरा स्थान है बहनों। यहाँ के लोकगीतों में, लोक नृत्यों में, पारंपरिक त्योहारों में और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों के जीवन में प्रकृति की खूबसूरत झलक दिखाई देती है ना मधु?
0: बिल्कुल रानी। और राजस्थान पहुँचे तो रंग बिरंगे वस्त्र, लोक संगीत और लोक नृत्य अपनी अलग छटा बिखेरते हैं। वहीं दक्षिण भारत की यात्रा मंदिरों की अद्भुत स्थापत्य कला, पारंपरिक भोजन और समृद्ध परंपराओं से परिचय कराती है। पंजाब के लोकगीत और उत्सव हमारी उमंग से मन मोह लेते हैं और पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक सुंदरता की साथ वहाँ की विविध जनजातीय और स्थानीय परंपराओं से हमें परिचय कराता है।
1: हाँ, यानी हर यात्रा हमारे सामने भारत का एक नया रंग खोलती है बहनों। और पता है, किसी भी जगह की यात्रा करके लौटते समय हम सिर्फ तस्वीरें और यादें ही नहीं लाते, कई बार उस जगह का थोड़ा सा रंग भी अपने साथ ले आते हैं। क्योंकि घूमना केवल तस्वीरें लेना तो नहीं है, बल्कि ये दुनिया को थोड़ा और करीब से देखने, समझने और उससे कुछ सीखने का अवसर भी है। यानी मधु, सिर्फ घूमना नहीं है, कुछ नया जानना भी है।
0: बिल्कुल रानी, और महिलाओं के लिए यात्रा का महत्व थोड़ा और खास है, क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियों में कई बार महिलाएं खुद के लिए समय निकालना भूल जाती हैं। ऐसे में परिवार के साथ की गई छोटी सी यात्रा भी उन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या से बाहर निकालने का अवसर देती है। नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना, कुछ नया सीखना, मन को एक नई ऊर्जा तो मिलती ही है ना।
1: हाँ, और साथ ही हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारे घर और रोज की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। बहनों, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर भी, और उसमें देखने सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जरूरी नहीं मधु कि हर यात्रा महंगी हो या बहुत दूर की हो।
0: बिल्कुल,
1: कभी कभी आसपास की किसी जगह पर जाना भी मन को खुश कर सकता है बहनों, क्योंकि बात जगह की दूरी की नहीं, उस अनुभव की गहराई की है।
0: और वो अनुभव और सीख बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। यात्रा बच्चों के साथ हो तो उनके लिए बहुत कुछ सीखने का अवसर बन जाती है बहनों। किताबों में पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन किसी ऐतिहासिक स्थान को अपनी आंखों से देखना, संग्रहालय जाना या किसी दूसरे प्रदेश के लोगों से मिलना, ये सब उनके लिए एक खुली किताब जैसा अनुभव होता है।
1: विविधता को समझना, ये अनुभव बच्चों को केवल जानकारी ही नहीं देते, बल्कि उनके भीतर सम्मान की भावना भी पैदा करते हैं। और बच्चों के साथ साथ हमें भी ये समझ आता है कि दुनिया को देखने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। और शायद इसलिए कहा भी जाता है ना बहनों, कि जिसने दुनिया को करीब से देखा है उसकी सोच अक्सर सीमाओं से आगे निकल जाती है।
0: लेकिन सखियों, यात्रा करते समय हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जिस जगह पर जाएं वहां की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करिए, स्थानीय लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करिए, ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान मत पहुंचाने दीजिए और प्रकृति को भी साफ सुथरा रखिए।
1: क्योंकि हम किसी जगह पर मेहमान बनकर ही तो जाते हैं ना मधु।
0: बिल्कुल,
1: और एक अच्छे मेहमान की पहचान तो यही है कि वो जहां भी जाए वहां की गरिमा का सम्मान करे, और यही बात किसी प्रदेश या संस्कृति पर भी लागू होती है बहनों।
0: इसीलिए रानी, अगली बार जब भी यात्रा करने की योजना सखियां बनाएं तो सिर्फ ये ना सोचे कि वहाँ क्या क्या देखना है, ये भी सोचे कि वहाँ जाकर क्या क्या सीखना है उन्हें।
1: क्योंकि खूबसूरत जगहें हमारी आंखों को खुशी देती है, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों को समझना हमारे मन और सोच को और समृद्ध करता है।
0: तो यात्राएं कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों को इस विविधता भरी दुनिया से परिचित कराने के लिए सखियों।
1: हाँ बिल्कुल मधु, क्योंकि किसी भी यात्रा की सबसे खूबसूरत मंजिल अक्सर वो होती है जहाँ पहुँच कर हम दुनिया के साथ साथ खुद को भी थोड़ा और समझ पाते हैं। क्यों?
0: बिल्कुल।

0: कैर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है सखियों आप सभी का। आज आप हैं अपनी दो सखियों मधु और रानी के साथ। रानी, सच कितने रंग है ना इस दुनिया में। कहीं पहाड़ों की खूबसूरती, कहीं समुद्र की लहरें, कहीं हरियाली से भरी वादियाँ। घूमते घूमते इंसान न जाने कितनी खूबसूरत जगहों से होकर आता है।
5: हाँ, लेकिन एक बात मैंने हमेशा महसूस की है मधु, कि दुनिया में कहीं भी घुमाइए, कितनी भी खूबसूरत जगह देखाइए, लेकिन जो सुकून अपने घर की चौखट पर कदम रखते ही मिलता है वो शायद कहीं और नहीं मिलता है ना।
4: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, उसमें अपने लोग होते हैं, यादें होती हैं, और जब उस घर में थोड़ी सी हरियाली भी जुड़ जाए तब तो घर और भी खिल जाता है।
5: सच मधु, तो फिर क्यों ना गृह लक्ष्मी के इस आंगन को भी सजाया जाए एक छोटी सी बगिया से, जहाँ पौधे सिर्फ हरियाली ना दे बल्कि घर के हर कोने में सुकून और खुशियों की खुशबू से भी भर दे।
4: बगिया? हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है रानी तुम्हारा।
5: हाँ बहनों, बगिया ये शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? चारों तरफ फैली हरियाली, मन को छूने वाला सुकून और आंखों को भाने वाली सुंदरता और बहुत सारी खुशियाँ। बगिया वो जगह है जहाँ मिट्टी में पौधे उगते हैं और मन में सुकून, जहाँ फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे घर के साथ जिंदगी भी मुस्कुरा रही हो, है ना मधु?
4: अरे वाह।
5: और आज इसी हरियाली, सुकून और अपनापन की सोच के साथ मैं रानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए रानी की बगिया।
4: नाम तो बड़ा प्यारा रखी हो रानी तुमने, और खास भी है ये।
5: हाँ खास तो होगी ही, आखिर रानी की बगिया है मधु। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ नाम में नहीं, इसके एहसास में होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि हर महिला अपने जीवन में रानी है और हर रानी की अपनी एक बगिया तो होनी ही चाहिए।
4: हाँ हाँ बिल्कुल, और कुछ बताओ अपनी बगिया के बारे में। यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे लगेंगे या कुछ और भी खिलेगा?
5: हाँ मधु, रानी की बगिया में पौधे लगेंगे, सुंदर फूल खिलेंगे, वो भी कई तरह के, और जिनकी खुशबू बहुत दूर तक जाएगी, और उनके साथ होंगी ढेर सारी यादें और बेहिसाब खुशियाँ भी।
4: यानी बात होगी पौधों की, फूलों की, उनकी देखभाल की। कम जगह में बगिया कैसे सजाएं, घर और रसोई के लिए कौन से उपयोगी पौधे लगाएं, इन सब की है ना?
5: हाँ, और साथ ही बात होगी हमारे परिवार रूपी बगिया की भी, क्योंकि पौधे हो या रिश्ते, दोनों को खिलने के लिए समय, समझ, प्यार और देखभाल चाहिए, है ना मधु? यानी हाँ हाँ, यानी ये बगिया सिर्फ घर के आंगन में ही नहीं दिल के आंगन में भी सजने वाली है।
4: वाह क्या बात कही तुमने रानी, और तब मैं और मेरे साथ सारी सखियां भी मिलकर इस बगिया को और भी खूबसूरत बनाएंगी, क्योंकि किसी को पौधों को लगाने का तरीका पता होगा, कोई अपनी बगिया की खूबसूरत बातें साझा करना चाहेंगी, तो कोई अपनी बहनों को पौधा उपहार में भी दे सकती हैं, इससे बगिया भी बढ़ेगी और उनकी दोस्ती भी।
5: हाँ कितनी सुंदर बात कही तुमने मधु, क्योंकि पौधा सिर्फ एक उपहार नहीं होता, वो एक ऐसी याद होती है जो समय के साथ बढ़ती रहती है। और पता है मुझे कुछ महीने पहले हरसिंगार का पौधा उपहार में मिला, मैंने उसे अपनी बगिया में लगा दिया। अब जब भी उस पौधे को देखती हूँ, उसके साथ उसे देने वाले खास इंसान की वो खूबसूरत सी मुस्कान भी याद आ जाती है मधु। और तब महसूस होता है, पौधे सिर्फ मिट्टी में नहीं लगाए जाते, उनके साथ यादें भी जड़े पकड़ती हैं।
4: वाह, तो फिर रानी की बगिया में हरियाली के साथ यादों की खुशबू भी होगी।
5: हाँ मधु, और यही तो इसकी खूबसूरती है।
4: तो सखियों, बगिया के लिए जगह बड़ी हो या छोटी ये जरूरी नहीं है। एक छोटा सा आंगन, बालकनी या छत, बस कुछ गमले रखने की जगह होनी चाहिए, है ना?
5: हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है बहनों, बस मन में हरियाली की चाह छोटी नहीं होनी चाहिए। और इस बगिया की शुरुआत क्यों ना एक ऐसे पौधे से हो जो हमारे घर, आंगन और परंपरा से बहुत करीब से जुड़ा है मधु, और वो है तुलसी का पौधा। क्योंकि ये हर घर के आंगन की शोभा है, हर आंगन अधूरा है इसके बिना, है ना? और इसके औषधीय फायदे भी बहुत हैं और धार्मिक महत्व भी। और फिर इसके साथ अलग अलग तरह के फूल पौधे जो आपको पसंद हो बहनों, आप लगा सकती हैं, अपनी बगिया की सुंदरता बढ़ा सकती हैं।
4: सुंदरता के साथ साथ जरूरतें भी पूरी की जा सकती है बहनों। अपनी बगिया में धनिया, पुदीना या करी पत्ता जैसे पौधे लगाकर बस ध्यान रखना है कि पौधों को पानी सही मात्रा में और पर्याप्त धूप मिले।
5: हाँ बहनों, हम अक्सर बड़े बदलाव की बात करते हैं, लेकिन कई बार बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी होती है। जैसे घर की खिड़की के पास एक पौधा लगाने से, बच्चों के साथ कुछ समय प्रकृति के करीब बिताने से,
4: रसोई के कचरे से खाद बनाने की कोशिश करने से, या फिर परिवार के साथ बैठकर बिना किसी मोबाइल के कुछ पल बातें करने से।
5: वाह मधु, क्या बात कही तुमने। और बहनों, खुशहाल जीवन हमेशा बड़ी चीजों से नहीं बनता, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। और इसी सोच के साथ अपनी बगिया का ख्याल रखिए बहनों, चाहे वो आपके घर आंगन की हो, आपके परिवार की हो या आपके मन की। क्योंकि जहाँ प्यार और देखभाल होती है, वहीं जीवन खिलता है ना?

0: मधु, आज तो हमने गृहलक्ष्मी के आंगन में रानी की बगिया तो सजा ली, हरियाली की बात हुई, रिश्तों और जीवन की भी, और हमारे यहाँ कुछ अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए। और बहनों, जब मधु साथ हो तो ये मिठास और भी बढ़ जाती है ना? तो मधु, अब इंतजार किस बात का, बताओ आज अपनी मधु की मिठाई में क्या लेकर आई हो हमारी बहनों के लिए।
1: बहनों, मिठाई का नाम सुनते ही मुंह से पानी आने लगता है ना? पर मधु की मिठाई में मिठाई के साथ साथ बात होती है जिंदगी के उस मीठे हिस्से की भी, जिसे हम सभी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ चुके होते हैं।
0: बिल्कुल, रोजमर्रा की आपाधापी में हम अपने जीवन के उस हिस्से को भूल जाते हैं बहनों, जो हमें कभी मिठाई से भी ज्यादा अच्छा और मीठा लगा था। उसे जिंदगी के स्वाद के लिए थोड़ा सा बचाकर जरूर रखिए, ताकि मिठास घुलती रहे।
1: हाँ बहनों, मिठाई का स्वाद न सिर्फ जीभ पर मिलता है, बल्कि उसकी खुशी को यादगार भी बना देता है। याद कीजिए वह पल जब एक मिठाई थी और दो खाने वाले, तब आपने उनके हाथ में उस मिठाई को देते हुए धीरे से मुस्कुराकर कहा था, तुम खाओ, मुझे मीठा ज्यादा कहाँ पसंद।
0: हाँ मधु, कभी कभी जिंदगी जीने के लिए अपनेपन की मिठास से सराबोर और स्वादिष्ट मिठाइयाँ दुकानों में नहीं, बल्कि अपनों के प्यार में ही तो मिलती है।
1: बिल्कुल रानी, जैसे कि माँ की रसोई में, बच्चों की हंसी में, अपनी सहेज कर रखी पुरानी यादों में, या अन्य इसी तरह के पलों में। चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी सखियों की, मीठा मात्र गुड़ नहीं होता, मीठी तो अपनों की बोली, कोई साथ बांट ले दुख तो जीवन हो सुख की रंगोली, रंग भरे इसमें सुकून के, खट्टी मीठी यादों के, रिश्तों की गर्माहट के, खुशियों की सौगातों के।
0: वाह मधु, कविता तुमने बहुत अच्छी सुनाई, और तुमने सच ही कहा कि खुशियों की सौगातें, रिश्तों की गर्माहट उसकी आत्मीयता से ही आती है, और इसी का नतीजा होता है कि घर परिवार में कोई त्योहार हो, उत्सव हो, हम सभी लोग अपनों के साथ मिलकर मनाना चाहते हो, है ना?
1: बात त्योहार की तुमने की, तो सखियों से कहना चाहूंगी कि परसों यानी 14 तारीख को हरितालिका तीज है सखियों, जिसकी रंगत में अभी से आप रंग गई होंगी, है ना? परिवार के सभी सदस्यों के बीच घर के आंगन में त्योहार मनाने का खास एहसास, पूजा की तैयारी, मेहंदी की लाली से सजे हुए हाथ, चूड़ियों की खनक, माथे की शोभायमान बिंदी, पायल की छमछम, पर इस सब के साथ त्योहार में रसोई को ना जोड़ा जाए, भला ये कैसे हो सकता है?
0: हाँ मधु, त्योहार और रसोई का तो खास नाता होता है बहनों, तो जल्दी से बताओ कि आज किस पकवान की रेसिपी लेकर आई हो, और आज सखियों को क्या बताने वाली हो?
1: आज रानी, बात एक ऐसी मिठाई की करूंगी जो सिर्फ मिठाई ही नहीं, बल्कि पूजा की थाली का प्रसाद बनकर घर घर में स्थान बनाती है, यानी कि मीठे मीठे स्वादिष्ट गुजिया की बात हम कर रहे हैं, जिसकी रेसिपी सखियों आपको बता देते हैं, तो नोट कर लीजिए सखियों। सामग्री सबसे पहले, मैदा 500 ग्राम, मावा 250 ग्राम, सूजी 2-3 चम्मच, पिसी चीनी 200 ग्राम, घी मोयन के लिए आधा कप पिघला हुआ कटे हुए सूखे मेवे इच्छा अनुसार, आधा कप नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, तलने के लिए रिफाइंड तेल या घी ले लीजिए। बनाने की विधि अब लिख लीजिए। एक बड़े बर्तन में मैदा लेकर उसमें घी पिघलाकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। उसे तब तक मसलिए मैदा को जब तक कि वो मुट्ठी में ना बंधने लगे। अब गुनगुना पानी लेकर थोड़ा थोड़ा मैदे में डालते हुए थोड़ा सख्त आटा गूंथ लीजिए। आटे को गीले कपड़े से आधे घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। अब एक पैन में 1 चम्मच घी गर्म करके उसमें सूजी हल्का सुनहरा होने तक भून लीजिए। फिर उसी पैन में 1-2 चम्मच 1-2 मिनट के लिए मावा भी भून लीजिए। मावा को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडे मावा में भुनी हुई सूजी, सूखे कटे मेवे और पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिला दीजिए। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर सामान्य मोटाई की पूरी बेल लीजिए। ध्यान रहे कि ज्यादा मोटी पूरी मत बेलिए। इसके चारों तरफ किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा दीजिए। अब इसे सांची में रखकर या फिर हथेली पर रखकर इसके बीच में भरावन को एक चम्मच लेकर भर लें। सांची को जोर से दबाएं, जो अतिरिक्त किनारे आटा निकले उसे हटा दीजिए और फिर उसे अच्छे से सील कर दीजिए। यदि हथेली पर रखकर बिना सांचे के बना रही हैं गुजिया तो उसे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दीजिए। एक कढ़ाई में घी या तेल गर्म कर लीजिए और उसके बाद आंच धीमा कर लीजिए। अब इसमें गुजिया को डालिए, सुनहरा होने तक इसे पलट पलट कर पकाइए। खस्ता गुजिया प्रसाद के लिए आपके तैयार हो गया है।
0: मधु, खुशबू तो ऐसी आ रही है कि लगता है गुजिया तैयार होने से पहले ही सबका मन जीत चुकी है। और बहनों, गुजिया की रेसिपी तो मधु ने बता दी और सखिया आप जान भी गई कि बाजार में खरीदने में वो शुद्धता कहाँ जो स्वयं बनाने में है ना।
1: बिल्कुल, तो सखियों गुजिया की तो बात हो गई, अब इस मिठास के साथ एक गीत भी सुन लिया जाए।

0: तो बहनों, इस तीज पर आप भी अपने घर में गुजिया बनाइए, अपनों के साथ बांटिए और इस खूबसूरत त्योहार की मिठास को रिश्तों तक पहुंचाइए। और मधु, कार्यक्रम की समय सीमा भी अब समाप्त होने को है। चलने से पहले आपको बता दे बहनों कि कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी।
1: अब अपनी दोनों सखियों मधु और
0: रानी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। सूत्रधार थी रानी और मधु, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे शैक्षिक प्रसारण। प्रस्तुति सहयोग है सुनीता कुमारी की और प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।
1: सभी श्रोताओं, विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, फर्स्ट एड अर्थात प्राथमिक उपचार। आज मैं विशेष रूप से स्कूल के विद्यार्थियों, कॉलेज के विद्यार्थियों और परिवार से बात करना चाहता हूँ। दुर्घटना, आपातकाल केवल अस्पताल में नहीं होता, यह स्कूल में, कॉलेज में, खेल के मैदान में, सड़क पर, यात्रा के दौरान और हमारे घरों में भी हो सकता है। कभी भी किसी भी बच्चे को खेलते समय चोट लग सकती है, किसी विद्यार्थी को अचानक चक्कर आ सकता है, किसी के गले में खाना फंस सकता है, किसी को बिजली का झटका लग सकता है या घर में किसी व्यक्ति को जलने, सांप के काटने जैसी आपात स्थिति हो सकती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या हम घबराएं या सही कदम उठाएंगे? फर्स्ट एड केवल एक मेडिकल स्किल नहीं है, बल्कि एक जीवन रक्षक कौशल है। सही समय पर दी गई सही सहायता किसी व्यक्ति की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फर्स्ट एड का अर्थ किसी घायल, अचानक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर या पेशेवर चिकित्सक सहायता मिलने से पहले दी जाने वाली तात्काल और आवश्यक सहायता। इसका उद्देश्य है जीवन बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और व्यक्ति की रिकवरी में सहायता करना। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट एड सीखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी अपने जीवन का बहुत समय घर में बाहर बिताते हैं। वे खेलते हैं, यात्रा करते हैं, अनेक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसलिए इमरजेंसी को पहचानना और सही मदद बुलाना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। मेरा संदेश विद्यार्थियों से यह है, आपको हर इमरजेंसी का इलाज खुद नहीं करना है। सबसे पहले अपनी और आसपास के लोगों की सेफ्टी सुनिश्चित करें। स्थिति को पहचानें, किसी रेस्पॉन्सिबल एडल्ट टीचर या इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को तुरंत सूचित करें और केवल उतनी ही फर्स्ट एड दें जितनी आप जानते हैं और सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। हर स्कूल और कॉलेज में फर्स्ट एड अवेयरनेस, CPR अवेयरनेस, बेसिक इमरजेंसी रेस्पॉन्स ट्रेनिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम बात करते हैं चोट और ब्लीडिंग यानी खून बहने की। खेल में मैदान, लेबोरेटरी, वर्कशॉप या घर में छोटे मोटे कट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को सबसे पहले शांत रहें, यदि संभव हो तो हाथ साफ करें और ग्लव्स का उपयोग करें। साफ गौज या साफ कपड़े से घाव का सीधा दबाव दें। छोटे

को उचित तरीके से साफ और कवर किया जा सकता है, लेकिन यदि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, घाव गहरा है, खून रुक नहीं रहा है, या व्यक्ति कमजोर या चक्कर महसूस कर रहा है, तो तुरंत प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लें। किसी भी गंभीर घाव पर बिना जानकारी के घरेलू चीज़ें जैसे पाउडर या अन्य पदार्थ लगाने से बचें। सही फर्स्ट एड का अर्थ सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से मदद करना। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति है बर्न। बर्न का अर्थ है जलना। जलने पर प्रभावित जगह को ठंडा बहते पानी से ठंडा करें, सीधे बर्फ ना लगाएं। जलने पर प्रभावित जगह को ठंडा बहते पानी से ठंडा करें, सीधे बर्फ ना लगाएं। टूथपेस्ट केवल मक्खन या अन्य घरेलू चीज़ें लगाने से बचें। यदि बर्न या जलना बहुत गंभीर या बड़ा गहरा या बिजली अथवा केमिकल से हुआ हो, तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। बेहोश की स्थिति में व्यक्ति की रेस्पॉन्सिवनेस और ब्रीथिंग को चेक करना महत्वपूर्ण है। रेस्पॉन्सिवनेस का अर्थ है कि वो व्यक्ति बेहोश है या अनकॉन्शियस है। बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती पानी या खाना ना दें। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है या सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत इमरजेंसी हेल्प लें। चॉकिंग यानी गले में खाना या कोई वस्तु फंसना भी गंभीर इमरजेंसी हो सकती है। यदि व्यक्ति खा सकता है या बोल सकता है, तो उसे खांसने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन यदि वह बोल या सांस नहीं ले पा रहा है, तो तुरंत मदद बुलाएं। सही टेक्निक सर्टिफाइड ट्रेनिंग से सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्नैक बाइट की। विशेष रूप से बरसात के मौसम या ग्रामीण क्षेत्रों में स्नैक बाइट यानी सांप का काटना एक महत्वपूर्ण इमरजेंसी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले, तो सबसे पहले उसे शांत करें और अनावश्यक मूवमेंट से बचाएं। प्रभावित जो अंग जिस पे सांप ने काटा है को जितना संभव हो उतना स्थिर रखें, और टाइट ज्वेलरी, वॉच या कोई, क्योंकि ये हटा दें क्योंकि ये स्वेलिंग हो सकती है। घाव को काटना, मुंह से जहर चूसना, टाइट ट्यूनिकेट लगाना या झाड़ फूंक में समय बर्बाद ना करें। समय बर्बाद करना खतरनाक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कदम है बिना देरी किए उचित अस्पताल पहुंचना। इलेक्ट्रिक शॉक में हम सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। पहले अपने आप को सेफ रखें। बिजली का सोर्स बंद किए बिना व्यक्ति को टच ना करें। सुरक्षित होने के बाद उसकी कंडीशन चेक करें और आवश्यक होने पर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें। हर घर में एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट में क्या-क्या होना चाहिए, मैं इसमें आगे बताता हूँ। गौज बैंडेज, एडहेसिव प्लास्टर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डिस्पोजेबल ग्लव्स, थर्मामीटर, ORS और सीजर्स यानी कैंची भी हम रख सकते हैं। और कुछ आवश्यक चीज़ें रखी जा सकती है, जैसे डॉक्टर की बताई हुई नॉर्मल मेडिसिंस। एक और महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग स्किल है CPR। CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। यदि कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाए, कोलेप्स हो जाए, कोई प्रतिक्रिया ना दे, सांस नहीं ले रहा हो और सामान्य रूप से सांस ना ले रहा हो, तो तत्काल इमरजेंसी रेस्पॉन्स की आवश्यकता होती है। CPR की सही जानकारी और समय पर दी गई कार्रवाई किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और परिवार के सदस्य को सर्टिफाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फर्स्ट एड का अर्थ का मतलब डॉक्टर बनना नहीं है, इसका मतलब है सही समय पे सही सहायता देना।

0: टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, लेकिन हमें उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि इमरजेंसी में शांत कैसे रहना है, मदद कैसे बुलानी है और किसी घायल व्यक्ति को सुरक्षित सहायता कैसे देनी है। हर स्कूल में फर्स्ट एड अवेयरनेस होनी चाहिए, हर कॉलेज में CPR और इमरजेंसी रेस्पॉन्स ट्रेनिंग को बढ़ावा देना चाहिए और हर घर में एक फर्स्ट एड किट तथा बेसिक इमरजेंसी नॉलेज जरूर होना चाहिए। याद रखिए, इमरजेंसी पहले से सूचना देकर नहीं आती, लेकिन तैयारी पहले से की जा सकती है। सही जानकारी, सही प्रशिक्षण और समय पर उठाया गया सही कदम किसी के जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, घबराइए नहीं, स्थिति को समझिए, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, फर्स्ट एड दीजिए और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लीजिए। फर्स्ट एड सीखिए, CPR सीखिए और किसी आपात स्थिति में किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कभी कभी आपके द्वारा उठाया गया एक सही कदम किसी के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण। शैक्षिक प्रसारण में आपने सुना कि छात्रों के लिए फर्स्ट एड की जानकारी क्यों जरूरी है और फर्स्ट एड के बारे में विस्तार पूर्वक आपने सुना। वार्ताकार थे विक्रम सिंह, प्रस्तुति सहयोग सुनीता कुमारी की और प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की।

फिल्म एक दूजे के लिए, आवाज लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रांची केंद्र, कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

यारा सिली सिली, लेकिन फिल्म से आपने ये गीत सुना? लता मंगेशकर की आवाज में संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने और गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: setup is quick and your
1: बेताब फिल्म से आपने ये गीत सुना। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आर डी वर्मन का संगीत था और गीत के बोल लिखा था आनंद बख्शी ने। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
1: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit is set to begin in New Delhi this afternoon. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. Let's cross over live to our correspondent Anupam Mishra, who's at the venue of the summit, that is Bharat Mandapam in New Delhi. So, Anupam, can you give us a sense and the overall vibe of the venue?
3: Yes, Shagun, the BRICS summit is all set to begin here in Bharat Mandapam. And nearly after an hour, the heads of state and heads of government will start arriving at the venue. The close for 11 begin at the summit hall at 2:30, where they will deliberate on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Shagun, Prime Minister, held bilateral meetings with his counterparts from Ethiopia, Malaysia and Vietnam, and also with counterparts of Abu Dhabi, and he will hold talks with the Chinese president this evening. Shagun, if we talk about India's BRICS chairship, it is coming at a time of significant global transformation as international system is experiencing economic fragmentation, technological disruption, right, and geopolitical uncertainty. BRICS providing an important avenue for addressing these challenges through dialogue and coordinated action. Shagun.
2: All right. Thank you, Anupam, for laying out those specifics for us from the ground. Chinese President Xi Jinping has arrived in New Delhi to participate in the BRICS summit. Prime Minister Modi is scheduled to hold a bilateral meeting with the Chinese president later today. Foreign Affairs Minister of Belarus, Maxim Ryzhenkov, arrived in New Delhi this morning to participate in the 18th BRICS summit in New Delhi. Prime Minister of Vietnam, Le Minh Hung, has also arrived in New Delhi for the summit. He was received by Minister of State for Civil Aviation, Muralidhar Mohol, at the airport. Earlier this morning, Director General of WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, landed in New Delhi to attend the summit. External Affairs Ministry said that his visit underscores the importance of global cooperation in health-related matters for shared progress and prosperity. Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali on the sidelines of the 18th BRICS summit in New Delhi. The Ministry of External Affairs said in a statement that the two leaders held discussions aimed at further strengthening the bilateral strategic partnership. Both the leaders reviewed progress across key sectors, including economic cooperation, defense and security partnership, and capacity building. The Prime Minister also held bilateral talks with his Malaysian counterpart Anwar Ibrahim on the margins of the BRICS summit being held under India's chairship. During the meeting, the two leaders reviewed the progress in bilateral cooperation across a range of areas, including trade and investment, defense and security, and people-to-people ties. Mr. Modi appreciated Malaysia's continued support in strengthening ASEAN-India relations. The leaders expressed their continued commitment to advancing the India-Malaysia Comprehensive Strategic Partnership. In hockey, India reached the final of the Women Junior Asia Cup 2026, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China today. For India, Supriya scored a hat-trick, while Madhu Sidhar and Sukhveer Kaur also found the net for India. Yuri Jong scored South Korea's only goal of the match. India will face the winner of the second semi-final between China and Japan in the final. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Sahib today. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने साझा किए महिला और बाल विकास के आंकड़े। देश के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों से 7.5 करोड़ बच्चों को मिल रहा सीधा लाभ। राज्य में पेयजल योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद सख्त। लंबित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को 15 दिनों में शुरू करने का दिया निर्देश। रांची रेल मंडल में अमृत भारत योजना के तहत पिस्का और मूरी सहित 5 स्टेशनों का आधुनिकीकरण पूरा, बाकी 12 पर काम अंतिम चरण में। एनआईए के निशाने पर आए माओवादी दस्ते के खिलाफ बिहार झारखंड की संयुक्त टास्क फोर्स का बड़ा सर्च अभियान। सीआरपीएफ और झारखंड जैगुआर के जवान मोर्चे पर। और मौसम विभाग ने जारी किया ताजा पूर्वानुमान। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में कल से मौसम साफ होने और बारिश से राहत की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र स्वस्थ भारत सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से वर्तमान में 7.5 करोड़ बच्चों और 1.10 करोड़ गर्भवती तथा धात्री माताओं को पोषण स्वास्थ्य तथा देखभाल सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।
5: 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र स्वस्थ भारत सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 7.5 करोड़ बच्चों, 1.10 करोड़ गर्भवतियों धात्री माताओं और लगभग 16 लाख किशोरियों का पोषण स्वास्थ्य और देखभाल की सेवाएं निरंतर पहुँचे। इन केंद्रों का LED स्क्रीन, शुद्ध पेयजल और आधुनिक ECG सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है।
4: राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की धीमी रफ्तार पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नेपाल हाउस में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित योजनाओं को 15 दिनों के भीतर शुरू करने को कहा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेल मंडल के 17 स्टेशनों का करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रांची रेल मंडल की सीनियर DCM श्रेया सिंह ने बताया कि पिस्का मूरी और गोविंदपुर रोड सहित 5 स्टेशनों का विकास कार्य पूरा हो चुका है।
6: हटिया और रांची सबसे बड़े स्टेशन हैं। उसके अलावा 3 स्टेशन हैं आउट ऑफ द 17 जिनका की ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेशन हो चुका है। उसके अलावा बाकी बचे स्टेशन पे भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। एग्जीक्यूटिव लाउंज होगी, अपर क्लास वेटिंग हॉल होंगे, सबको हम लोग CCTV द्वारा मॉनिटर भी करेंगे ताकि सेफ्टी भी इंश्योर कर।
4: पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला रेलवे स्टेशन पर 2 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने गीतांजलि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इस नई सेवा का उद्घाटन किया।
7: तुमने कहा क्या बेल भवन लाए और वो गीतांजलि एक्सप्रेस और आजादी डिमांड हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। रेल के लिए सभी जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को मैं एक आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
4: रामगढ़ कॉलेज में नवाचार स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमिता प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चंद्रभूषण शर्मा ने इसका उद्घाटन करते हुए कॉलेजों को डिग्री के साथ स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार SIR के तहत अब तक 7,22,440 आवेदन और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों और गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में गॉल ब्लैडर, किडनी, पथरी और हर्निया के मुफ्त ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस योजना से हजारों परिवारों को इलाज के भारी खर्च और आर्थिक तंगी से बड़ी आजादी मिली है।
8: मैं राहतधाम से आई हूँ, मुझे अपेंडिक्स हुआ है और डॉक्टर ने मुझे प्रिफर किया कि आप आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करवाओ ताकि आपका ऑपरेशन फ्री हो सके, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से अपना ऑपरेशन भी करवाया जो कम्प्लीटली फ्री था। आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ।
4: बिहार झारखंड के मोस्ट वांटेड और एनआईए के निशाने पर आए माओवादी नितेश यादव के दस्ते के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाई गई है। सीमावर्ती इलाकों में तैनात इस स्पेशल टीम में सीआरपीएफ, एसएसबी, बिहार एसटीएफ और झारखंड जैगवार के जवान शामिल हैं। पलामू के डीआईजी किशोर कौशल ने कड़ी चेतावनी दी है कि इस इनामी नक्सली की मदद करने या लेवी का पैसा इन्वेस्ट करने वाले सफेद पोशों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
9: पिछले समय में कुछ इस प्रकार की सूचना आती रही है कि उसके द्वारा मूवमेंट किया गया है। इसको लेकर दोनों ही राज्यों के द्वारा और संबंधित जिलों के द्वारा भी संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर ग्रामीण हैं या इस प्रकार के सिंपथाइजर्स हैं या उनको सपोर्ट करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है और जो लोग भी इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे उनको समान रूप से दोषी माना जाएगा।
4: जमशेदपुर में वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अफगानी नागरिक मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष पुनरीक्षण के दौरान संदिग्ध नाम सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि पुलिस इस मामले में शामिल दो अन्य फरार अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
10: एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण होता है, दर्जन ज्यादा लोगों का अध्यापन किया जा रहा था। उसी में पता लगा कि तीन लोग हैं जो भारतीय नागरिकता को साबित नहीं कर पाए और उसी के क्रम में आवेदन एक दिया गया है थाने में भी। कार्यपालक दंडाधिकारी जो उस कार्य में लगे हुए थे उनके द्वारा उसी में लीगल कार्रवाई आगे की जा रही है।
4: दुमका में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खरीफ मौसम में जिले के 18,56,000 से अधिक भूखंडों के सर्वे का लक्ष्य है।
11: कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत सर्वेयर गांव गांव जाकर मोबाइल ऐप के जरिए खेतों के जियो टैग फोटो ले रहे हैं। इसमें किसानों का ब्यौरा, खसरा नंबर, फसलों के प्रकार, बुआई की तिथि और सिंचाई के साधनों की सटीक जानकारी ऐप में दर्ज की जा रही है। इस डिजिटल रिकॉर्ड से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति और पीएम किसान जैसी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी तथा फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। इसके अलावा सूखा और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फसल क्षति का आकलन तेजी से हो सकेगा जिससे प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल पाएगा। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
4: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कल से मौसम साफ होने की संभावना है। हालांकि आज दोपहर बाद कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने साझा किए महिला और बाल विकास के आंकड़े। देश के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों से 7.5 करोड़ बच्चों को मिल रहा सीधा लाभ। राज्य में पेयजल योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद सख्त। लंबित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को 15 दिनों में शुरू करने का दिया निर्देश। रांची रेल मंडल में अमृत भारत योजना के तहत पिस्का और मुरी सहित 5 स्टेशनों का आधुनिकीकरण पूरा, बाकी 12 पर काम अंतिम चरण में। एनआईए के निशाने पर आए माओवादी दस्ते के खिलाफ बिहार झारखंड की संयुक्त टास्क फोर्स का बड़ा सर्च अभियान। सीआरपीएफ और झारखंड जैगवार के जवान तूफान मोर्चे पर। और मौसम विभाग ने जारी किया ताजा पूर्वानुमान, राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में कल से मौसम साफ होने और बारिश से राहत की उम्मीद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
12: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव।

अनुरंजनी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे आज की कलाकार हैं अनीता सेन, और उनके साथ संगत कर रहे हैं तबला पर ओमकार गोलवाड़ी, सारंगी पर लियाकत अली खान, फ्लूट पे रोनू मजुमदार और तानपुरा पर अन्ना जोशी एंड तिरगुन जोशी।

0: शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति
0: जी, आनंद धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
4: India's innovation, भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम ₹3,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू बध्य दुनिया

0: के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल एजीटीएफ और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा ओएफटीईसी ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
1: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: सैनिकों के त्याग और बलिदान के कारण आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। जब हम सुबह की पहली किरण का स्वागत करते हैं, जब बच्चे निश्चिंत होकर विद्यालय जाते हैं, जब पर्व त्योहार पूरे उल्लास से मनाए जाते हैं, तब कहीं ना कहीं देश के सीमाओं पर कोई सैनिक 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। उसके लिए मौसम कभी बाधा नहीं बनता, कठिन परिस्थितियां कभी कदम नहीं रोकती और देश की सेवा से बड़ा उसके लिए कोई धर्म नहीं होता। तो इन्हीं सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम जय भारती की ये पहली प्रस्तुति।

हमारे सैनिक केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। परिवार से दूर रहकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर देश की सेवा करते हैं। आज का यह कार्यक्रम उन सभी को समर्पित है जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया, या उन जीवन साथियों को जो हर पल अपने सकुशल लौटने का उन प्रार्थना करते हैं, और उन बच्चों को भी जो अपने माता पिता पर गर्व करते हुए बड़े होते हैं।

एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसकी वर्दी नहीं बल्कि उसका अनुशासन, उसका साहस और उसका राष्ट्र प्रेम होता है। हम सभी का भी यह दायित्व बनता है कि अपने सैनिकों के सम्मान को केवल शब्दों तक सीमित न रखें बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के विकास में और एकता में अपना योगदान दें।

0: जय भारती कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हाजिर होते हैं कार्यक्रम जय भारती के साथ।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा

का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

विराम के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में। आप हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों पर आधारित कार्यक्रम जय भारती। भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग भाषाएं, वेशभूषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां, लेकिन जब बात देश की आती है तब हम सब एक हो जाते हैं और यही हम सबकी सबसे बड़ी शक्ति है और हमारे सैनिकों का सबसे बड़ा संबल भी।

ये थी जय भारती कार्यक्रम की आज की अंतिम प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। देश भर में 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र स्वस्थ भारत सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से वर्तमान में 7.5 करोड़ बच्चों को और 1.10 करोड़ गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण स्वास्थ्य तथा देखभाल सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को धीमी रफ्तार कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नेपाल हाउस में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित योजनाओं को 15 दिनों के भीतर शुरू करने को कहा है। जमशेदपुर में एसआईआर के दौरान 3 अफगानी नागरिकों के नाम सामने आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पुलिस पर पैसे लेकर पासपोर्ट बनाने का आरोप लगाया है।
1: विदेशी नागरिक जिनके पास बजाबता अपने देशों का, वो बांग्लादेश, उनका

कौशल ने कड़ी चेतावनी दी है कि इस इनामी नक्सली की मदद करने या लेवी का पैसा इन्वेस्ट करने वाले सफेदपोशों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आपने सुना प्रादेशिक समाचार, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, वक्त है कार्यक्रम रांची मेलोडीज का। रांची मेलोडीज में आप सुनते हैं फिल्मी गाने। वो कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशहाल रखिए, खुश रहिए। कैसे, वो आपको मैं बताऊंगी कुछ ही देर में। तब तक आप गाने को एंजॉय कीजिए।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। माफ कीजिएगा, मैंने रांची मेलोडीज बोल दिया था। तो फिल्म संगीत की ये अगली प्रस्तुति।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अगला कार्यक्रम।

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको ले चलते हैं नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। और बीते दिनों तालकटोरा स्टेडियम पूर्वोत्तर भारत के युवाओं की प्रतिभा से सराबोर हुआ। पूर्वोत्तर भारत के युवाओं ने यहाँ पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति और अपनी रचनात्मकता का बेहद खूबसूरत प्रदर्शन किया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं के साथ संवाद किया। तो आइए एक खास रिपोर्ट सुनते हैं, जिसमें हम इस खास आयोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
1: संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने महोत्सव के 9वें संस्करण में भाग लिया और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: The capability to take India forward, from coders to creators to entrepreneurs to musicians like Lily, who enthrall us with her capability, to athletes, Lolina Borugen, Mirabai Chanu. What does not my Northeast have? And this is the power we need to unleash. And this is the power that Prime Minister Narendra Modi aims to unleash by calling the Northeast our Ashta Lakshmi, our eight forms of Lakshmi, my young.

0: स्ट्रेंथ।
1: उन्होंने खेल, संगीत, शिक्षा, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में क्षेत्र के युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही अवसर और मंच उपलब्ध कराने की। कार्यक्रम में माई होम इंडिया की भूमिका का भी उल्लेख किया गया। सिंधिया ने कहा कि 21 साल पहले पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों को दूसरे शहरों में अपनेपन का एहसास कराने के उद्देश्य से शुरू हुई यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने वाला मंच बन चुकी है। महोत्सव में विद्यार्थियों ने अपनी कला और संस्कृति की खूबसूरत झलक पेश की। नृत्य प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों और विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी दी गई। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट ने पूर्वोत्तर की संस्कृति के साथ वहां के युवाओं की प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर सामने लाने का काम किया। यह महोत्सव विविधता में एकता और युवा शक्ति के संदेश के साथ सम्पन्न हुआ। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार।
2: श्रोताओं, आर्थिक सहायता किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। मेघालय सरकार ने भी मेघालय के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान करके उनके आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए रास्ता तैयार किया और करीब 87,000 ऐसे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप्स दी गई। तो किस तरह से मेघालय सरकार की इस पहल से विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिल रही है और वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं।
3: मेघालय सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 87,691 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी की है। इसके लिए करीब 91 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि इस बार छात्रवृत्ति का भुगतान तय समय से पहले पूरा हुआ। सरकार के अनुसार 27 अगस्त को राशि जारी किए जाने के बाद विद्यार्थियों के खातों में पैसा 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर पहुंच गया। पहले इसके लिए 5 से 6 दिनों का समय बताया गया था। इस तेज और सीधे भुगतान के पीछे स्नेह स्पर्श व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके जरिए राशि को सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया गया। इस वर्ष छात्रवृत्ति के लिए कुल 96,812 आवेदन सत्यापित किए गए थे। इनमें से 87,691 विद्यार्थियों को भुगतान मिल चुका है। वहीं करीब 9 करोड़ 121 विद्यार्थियों का भुगतान बैंक खाते और आधार लिंकिंग से जुड़ी समस्याओं के कारण लंबित है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित राशि रद्द नहीं होगी, बैंक विवरण ठीक होने के बाद भुगतान किया जाएगा। छात्रवृत्ति मिलने से विद्यार्थियों को फीस, पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलेगी। ये पहल राज्य में आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मेघालय की ये पहल बताती है कि समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता विद्यार्थियों की शिक्षा के सफर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार।
2: मिजोरम न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत बल्कि हमारे भारत का एक खूबसूरत राज्य है और राज्य की इसी खूबसूरती को देश दुनिया में सबके सामने लाने के लिए लगातार मिजोरम सरकार ने प्रयास भी किए हैं। विंटर फेस्टिवल एक ऐसा ही अवसर होता है जब पर्यटक मिजोरम आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं, यहाँ की कला संस्कृति से अवगत होते हैं और खासतौर पर जो वहाँ का आतिथ्य है उसका भी लाभ लेते हैं। तो मिजोरम सरकार ने अब विंटर फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं और किस तरह से पर्यटन आकर यहाँ के आकर्षण का लाभ ले सकते हैं, इस मामले में इंतजाम किए जा रहे हैं। तो विंटर फेस्टिवल की तैयारियों पर मिजोरम सरकार की जो परियोजनाएं हैं, इस संबंध में आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
4: मिजोरम
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा की अध्यक्षता में विंटर फेस्टिवल 2026 की आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों और विभिन्न गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को भारत की विंटर कैपिटल के रूप में पहचान दिलाने के लिए विंटर फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को भी सामने लाया जाएगा। महोत्सव में कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। मत्स्य विभाग की ओर से एंगलिंग यानी मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से बांस से जुड़े नए उत्पादों की प्रदर्शनी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर सड़कों की सजावट, क्रिसमस परेड और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मिजोरम में पर्यटन को भी इस पहल से नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्य में इस साल जनवरी से जून के बीच 537,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार बैराबी सैरांग रेल लाइन शुरू होने के बाद राज्य में पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। विंटर फेस्टिवल के जरिए मिजोरम अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबसूरती को देश दुनिया के सामने रखने के साथ स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार।
2: श्रोताओं, आज हम त्रिपुरा का जो आधुनिक स्वरूप देख रहे हैं उसमें कई ऐसे व्यक्तित्वों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिनसे आज आधुनिक त्रिपुरा की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ऐसे ही एक शख्सियत थी महाराजा वीर विक्रम। उन्होंने त्रिपुरा का एक अच्छा आधुनिक स्वरूप हम सभी के सामने प्रस्तुत किया और त्रिपुरा के बुनियादी ढांचे, यहाँ के विकास को लेकर एक नई तस्वीर हम सभी के सामने प्रस्तुत की। तो आइए महाराजा वीर विक्रम की त्रिपुरा के विकास में योगदान की इस कहानी को सुनते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
4: त्रिपुरा के इतिहास में कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिनकी दूरदर्शी सोच का असर आज भी राज्य के विकास में दिखाई देता है। इनमें महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता माना जाता है। 19 अगस्त 1908 को जन्मे महाराजा वीर विक्रम ने कम उम्र में त्रिपुरा की राजगद्दी संभाली। उनका शासनकाल भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिन्होंने त्रिपुरा के आधुनिक विकास की नींव रखी। त्रिपुरा के शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत किशोर देवबर्मन ने बताया कि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य और महारानी कंचन प्रभा देवी के प्रयासों से ही त्रिपुरा को भारतीय संघ का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इसी वजह से आज हम गर्व से खुद को भारत का नागरिक कहते हैं।
5: वो सिर्फ महाराजा नहीं थे, सिर्फ जनजाति के लिए या बंगालीज के लिए या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए, वो एक देश प्रेमी थे। आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं क्योंकि कंचन प्रभा देवी जानते थे कि महाराजा का सपना है कि हम एक हिंदुस्तान में रहे, ना कि पाकिस्तान में।
4: महाराजा वीर विक्रम ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज की स्थापना हुई जो आज भी त्रिपुरा के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल है। उन्होंने राज्य में स्कूलों के विस्तार और आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनका योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, शहरों के सुनियोजित विकास पर जोर दिया, सड़कों और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाया और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया। उनके प्रयासों से अगर तला को एक व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ। अगरतला एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराना भी उनके प्रमुख योगदानों में शामिल था। आज महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। शाही परिवार की एक अन्य सदस्य राजकुमारी प्रज्ञा देव बर्मन ने भी महाराजा वीर विक्रम के योगदान को याद करते हुए उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता बताया।
6: उन्होंने जो भी कुछ किया, अभी हम लोग पूरा अपना त्रिपुरा में हम देख सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, MBB कॉलेज हो या आपके धर्मनगर में कॉलेज है, उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना त्रिपुरा में, वोटिंग राइट्स, उसको छोड़ के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाना, अगरतला टाउन प्लानिंग और सबसे जो बड़ा उनका जो विजन था वो था आपका लैंड रिजर्वेशन, जो आज का जो TTADC है, इट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ जो महाराजा ने इन्विजन किया था ताकि हमारे लोगों को बचाकर अपना लैंड राइट्स दे सके। तो ये सबका जो भी महाराज ने हमारे सबके लिए किया, धर्म जाति ये सब नहीं देखा महाराजा ने कभी भी। और आजकल के जमाने में लोग वोट्स लेने के लिए, पावर में आने के लिए ये सब छोटे छोटे चीजों को लेकर हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में बहुत कुछ पैदा किए हैं।
4: भारत की आजादी से पहले ही महाराजा वीर विक्रम ने एक आधुनिक और प्रगतिशील त्रिपुरा का सपना देखा था। शिक्षा, बुनियादी ढांचे, शहरों के विकास और प्रशासन के क्षेत्र में उनके फैसले अपने समय से काफी आगे थे। त्रिपुरा के विकास में उनके योगदान की छाप आज भी दिखाई देती है। उनकी दूरदर्शी सोच और विकास

0: की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, सिक्किम की खेल प्रतिभाओं के बारे में हम तो पहले ही आपके साथ बातें करते रहे हैं इस कार्यक्रम में, और आज फिर आपके साथ हाल ही में आयोजित हुई एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ के बारे में बात करते हैं, जहां सिक्किम के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। तो स्पीति अल्ट्रा मैराथन में किस तरह से सिक्किम की खेल प्रतिभाओं ने अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत किया, आइए इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं।
2: भारतीय सेना और फिटिजन इंडिया LLP के सहयोग से आयोजित इस ऊंचाई वाले मैराथन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के काजा और आसपास के इलाकों में किया गया। इसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में फिटनेस, साहस और सहन शक्ति को बढ़ावा देना था। इस प्रतियोगिता में 77 किलोमीटर की कुंजुमला चैलेंज सबसे कठिन स्पर्धाओं में शामिल रही, जिसमें प्रतिभागियों को ऊंचाई वाले चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ा। सिक्किम की ओर से टीका एम मंगर ने 77 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन सफलतापूर्वक पूरी की और 21 किलोमीटर की आयु वर्ग स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। मीना कुमारी सुब्बा ने 77 किलोमीटर की ओपन श्रेणी में दूसरा रनर अप स्थान प्राप्त किया। वहीं सुष्मिता राय ने 77 किलोमीटर में ही अपने आयु वर्ग में पहला और 42 किलोमीटर स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। सन माया सुब्बा ने 77 और 42 किलोमीटर दोनों स्पर्धाओं में अपने आयु वर्ग में पांचवा स्थान प्राप्त किया। विनीता कामी ने 42 किलोमीटर में अपने आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। वहीं शोभा राय ने 21 किलोमीटर की सूर्या स्पीति चैलेंज में अपने आयु वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में गंगा हॉन्ग सुब्बा ने 77 किलोमीटर की ओपन श्रेणी में दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने 42 किलोमीटर की स्पर्धा में अपने आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। सिक्किम के इन खिलाड़ियों की उपलब्धि ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और कठिन परिस्थितियों में उनकी मेहनत और जज्बे को भी सामने रखा है। मोइनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फौजी भाइयों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जय भारती। माफ कीजिएगा, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। आज हम करेंगे कुछ जिंदगी की बातें। किसी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। तो श्रोताओं, जिंदगी सिर्फ सांसों का चलना नहीं दोस्तों, जिंदगी है हर पल को महसूस करना, कभी मुस्कुराना, कभी आंसू छुपाना, कभी अपनों के साथ हंसना और कभी यादों में खो जाना।

भारतीय सेना जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: विराम के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है। एक बार हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज। दोस्तों, जिंदगी का सबसे खूबसूरत, वो कहते हैं ना, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर रोज हमें एक ये नया मौका देती है। कल कैसा था इसकी चिंता छोड़ दीजिए, आज को खुलकर जी लीजिए, क्योंकि कुछ हसीन लम्हे दोबारा नहीं आते, वो सिर्फ यादों में मुस्कुराते हैं। जिंदगी की किताब में हर पन्ना जरूरी होता है, कुछ पन्ने हंसाते हैं और कुछ पन्ने हमें जीना सिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं।

दोस्तों, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन जो इंसान मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना जानता है वही असली मायनों में जिंदा दिल होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के गीत गुनगुनाते रहिए। क्या पता कौन सा लम्हा खास बन जाए। बस हर पल को दिल से अपनाते रहिए।

0: जो मिला है उसे संवार लीजिए, जो नहीं मिला उसे भूल जाइए, बस मुस्कुराइए और गुनगुनाइए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल की आखाक जिया करते हैं। इसी के साथ आज के रांची मेलोडीज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। देशभर में 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र स्वस्थ भारत सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से वर्तमान में 7.5 करोड़ बच्चों और 1.10 करोड़ गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण, स्वास्थ्य तथा देखभाल सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। गुमला व्यवहार न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला पुलिस बल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सुनील राम ने बताया कि शिविर में 200 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था, प्रभावी प्रबंधन, नवाचार और आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए दुमका के 4 प्रधानाध्यापक 5 दिवसीय एक्सपोजर विजिट पर राजस्थान जाएंगे। इनमें सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस दुमका, प्लस टू हाई स्कूल रामगढ़, पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुमिरदह और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय काठीकुंड के प्राचार्य शामिल हैं। सरायकेला खरसावां जिले के राजबांध हनुमान मंदिर के पास शनिवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर अमन अंसारी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और लगभग 3 घंटे से आवागमन प्रभावित है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित ज्वेलरी दुकान में हथियार के बल पर लूटपाट करते 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि अपराधियों के पास से 1 किलो चांदी के आभूषण, सोने के जेवर, घटना में इस्तेमाल 3 हथियार, जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में अगले 1 हफ्ते तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कल से मौसम साफ होने की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। कल्याणी में आप वार्ता सुनेंगे प्राथमिक उपचार का महत्व। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रोहित सिंगर, भेंटकर्ता गौरव कुमार। चर्चा सुनेंगे स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ जीवन शैली। सूत्रधार युवराज कुमार। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

श्रोता मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ, खुशहाल और उत्साह से भरपूर होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूँ आपका दोस्त युवराज। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मनोरंजन, जानकारी, गीत और प्रेरणा से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ नए विचारों, रोचक चर्चाओं और मन को छू लेने वाला मधुर गीतों के सफर पर। आने वाले कुछ पलों में हम साथ साथ सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और गीत संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते एक विशेष चर्चा के साथ। मित्रों, जीवन में सुख और सफलता के लिए सबसे बड़ी पूंजी है हमारा स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है। अनियमित खानपान, पर्याप्त नींद का अभाव, शारीरिक गतिविधियों में कमी और तनाव हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ जीवन शैली। श्रोताओं, स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ केवल बीमारी से नहीं बचना, बल्कि अपने शरीर और मन को बेहतर स्थिति में बनाए रखना भी है। इसके लिए हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले बातें करते हैं संतुलित आहार की। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पौष्टिक तत्व शामिल हो। बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मीठा और नमक वाला भोजन सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं नियमित शारीरिक गतिविधि। व्यायाम के लिए हमेशा जिम जाना जरूरी नहीं है। तेज चाल से पैदल चलना, योग करना, साइकिल चलाना या अपनी क्षमता के अनुसार कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करना भी लाभदायक हो सकता है। अब बातें करें नींद की। आज हम मोबाइल और दूसरे डिजिटल उपकरणों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पर्याप्त नींद को नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छी नींद शरीर और मस्तिष्क को आराम देती है, इसलिए सोने जागने नींद

0: कहा जाए तो सही समय से अगर किसी भी व्यक्ति को जाए जिसको आवश्यकता है, तो उसके लिए एक विंडो बन जाती है। जब वो कंसल्टेंट के पास पहुंचता है तो उसके पास समय होता है। सर, रास्ता के बारे में कुछ बता, की शुरुआत कीजिए, कैसे आइडेंटिफाई करना की जरूरत है या तत्काल उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है।
1: देखिए, प्राथमिक चिकित्सा अगर हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहले मैं ट्रॉमा से रिलेट करता हूँ इसको। अगर मान के चलिए किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए या फिर वो कहीं पे घर पे गिर जाते हैं, अगर मरीज बेहोश हो गया है तो मरीज को तुरंत से तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर मरीज बेहोश नहीं हुआ है, कुछ कट गया और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग अगर उस लेवल पे है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो दबाने पे भी दब नहीं रहा है या फिर आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लीडिंग हो रही है, तब इस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। अगर पेट के बल गिरे हैं या पीठ के बल गिरे हैं और पेट में दर्द या पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो एक प्लेन पैरासिटामोल या पेन किलर जो भी घर पे आपने रखा है वो खा लें और तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके देखें कहीं इंटरनल ऑर्गन्स में इंजुरी नहीं हुई है। और वो जाने के बाद अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप जाते हैं, इमरजेंसी अगर वहाँ पे केपेबल इनफ है, तो आपको तुरंत से तुरंत अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे की ज़रूरत है तो एक्सरे करके पता चल जाता है। दूसरा प्राथमिक उपचार होता है अगर जल गया। जलने पर डिपेंड करता है बॉडी सरफेस एरिया कितना, जब बहुत ज़्यादा जल गया है तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि पेशेंट चले जाते हैं। बहुत कम जलता है तो उसमें क्या होता है, जैसे लोकल उपचार में लोग उस पर कोलगेट लगा लेते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ अगर स्नेक बाइट है, आप हमारे पास अगर किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं जिसका इमरजेंसी इज़ वेल इक्विप्ड, वो वहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि जिस मरीज को जिस सांप ने काटा है, मतलब ब्लड टेस्ट के बाद पता चल सकता है कि मरीज पेशेंट जो सांप ने काटा था वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। नॉन पॉइजनस है तो ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, और अगर पॉइजनस रहा तो तुरंत एंटी वेनम देके उसके सांप के जहर को काटा जा सकता है, जिस कारण पेशेंट किडनी फेलियर या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स में नहीं जाता है। मल्टीपल चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट होता यही है कि लैक ऑफ एजुकेशन और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं हाँ कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा अगर दर्द हो भी रहा है तो गिरे थे ठीक हो जाएगा, बट आगे चल के वही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हॉस्पिटल जाने का थ्रेशोल्ड बहुत भी कम होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल तब जाते हैं जब लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब अगर हम घर पे खुद से नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तब घर जाएंगे, नहीं। अगर आपको कोई चोट लगा है, बहुत बार होता है कि इमिडिएटली नहीं पता चलता है, बट जाइए आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको एक सही मतलब रास्ता दिखा देंगे कि क्या करना है आगे, और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जाइए एक सिंपल सा एक एक्सरे और एक चेकअप करा के आप घर वापस आ सकते हैं।
0: इसमें ट्रस्ट ये रखना है कि जो मेडिसिन पर आप भरोसा करें, स्पेशलिस्ट पर भरोसा करें, खुद से इलाज ना करें। सर, फर्स्ट एड के बारे में एक मेरा प्रश्न ये है कि फर्स्ट एड तो सर घर से ही शुरू हो जाता है क्योंकि छोटी मोटी चोटें घर में भी लगती रहती हैं, तो फर्स्ट एड के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स घर में होने चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स बनाने की जो बात आती है तो उसमें मूलभूत क्या चीजें रहनी चाहिए?
1: फर्स्ट एड अगर बॉक्स हम बनाना चाहते हैं तो बहुत बेसिक में अगर बोलूंगा तो सबसे पहले एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होना चाहिए, जैसे कि डिटॉल आता है, सेवलॉन आता है, एक पट्टी होनी चाहिए, कुछ कॉटन रुई जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए, एक बेसिक पेन किलर जो पैरासिटामोल है वो होना चाहिए, और कभी कभी जैसे वॉमिटिंग हो जाता है कुछ लोगों को तो उसके लिए एक ऑर्डन सेट्रॉन जैसे एंटी एमेटिक बोलते हैं जिसको, वो रख सकते हैं आप। इतना
0: बेसिक
1: तो
0: इतना बेसिक रहना
1: तो होना
0: चाहिए
1: ही चाहिए,
0: क्योंकि सर आजकल आता है कि आजकल लोग जब नई गाड़ियां भी खरीदते हैं तो एक छोटा सा फर्स्ट एड किट गाड़ियों में भी
1: ये
0: रखा
1: बेसिक
0: रहता
1: तो
0: है,
1: रखना ही चाहिए,
0: ये बेसिक उसमें होना चाहिए। सर, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आता है, चूंकि अक्सर चोट जब लगती है तो लोग वो फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के कोई चीज अगर चुभ गई है, जैसे कोई कील गड़ गई है या किसी भी प्रकार का सर लैसिरेशन है, तो उसमें से वो उस ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये फर्स्ट एड के हिसाब से सही
1: नहीं,
0: होगा?
1: नहीं, कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। बहुत बार हमने इमरजेंसी में देखा है कि कोई मरीज उस तरह से आया जिन्होंने हमारे तक पहुंचते पहुंचते से पहले तक ही वो कील या फिर कोई डीप चीज निकाल दिया है, तो होता यह है कि इंटरनल हमारे बॉडी में जो बिगर आर्टरीज हैं वो बहुत मेजर लेवल पे ब्लीड करने लग जाती हैं, और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज ब्लीड करके ही डेथ तक जा सकता है। तो कभी भी इस तरह का हो गया लगा है, लगे रहने दीजिए, आप सही जगह पर पहुंचिए जहां पे हमारे पास अगर ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली हो भी रही है तो मेरे पास वहां पे इक्विपमेंट्स हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आई कैन यूज टू स्टॉप दैट ब्लीडिंग। ठीक है, रादर वो घर पे करे या फिर जहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप नहीं है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि ये फिल्मों से प्रभावित होकर या सोशल मीडिया से प्रभावित होकर इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। जो चिकित्सक का कार्य है वो कार्य चिकित्सक ही करें और हॉस्पिटल में करें तो बेहतर है। सर, आपने ट्रॉमा की बात की तो इसमें एक CPR का कॉन्सेप्ट आता है, तो CPR की जानकारी क्या बेसिक सबको होनी चाहिए? क्योंकि पहला प्रश्न लोग यही पूछते हैं कि हम क्यों सीखें।
1: आपको अगर मैं बता दूं CPR के लिए, तो लास्ट अभी 3-4 महीने पहले हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक हर घर इमरजेंसी रेडी कैंपेन लॉन्च किया था, जिसके तहत हम लोग तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5,000 से ज़्यादा लोगों को इन 3 से 4 महीने के अंदर CPR की देर की ट्रेनिंग दे चुके हैं। CPR एक ऐसा स्किल है जो मेरे हिसाब से हर किसी को पता होना चाहिए। सामने बात करते करते कोई भी बेहोश हो जाए तो उस समय अगर CPR एक ऐसा स्किल है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये मरीज बेहोश हुआ है, तो कहीं हार्ट बंद होने के कारण तो बेहोश नहीं हुआ है, और अगर हार्ट बंद होने के कारण बेहोश हुआ है तो इस स्थिति में आप नॉर्मल पर्सन क्या करता है? अगर किसी को भी सामने वाला, अगर घर वाला कोई बेहोश हो गया तो हम सबसे पहले काम करते हैं नियरेस्ट हॉस्पिटल में फ़ोन कर देते हैं। अगर मैं रांची की बात करूँ तो रोडवेज में बहुत बार ऐसा होता है एम्बुलेंस एक बड़ी गाड़ी होती है, रोडवेज में मान के चलिए आपने मेरे को फ़ोन किया कि सर मेरे पास एक मरीज़ है जो बहुत बुरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको हम लोग अपने लेवल पे सी कोशिश कर रहे हैं उनको उठाने की, मैं अपना नियरेस्ट अपना एम्बुलेंस में बेस्ट स्टाफ, बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ द मेडिसिन सब कुछ लेके भेजूंगा। बट रोडवेज में जब एम्बुलेंस आता है तो अभी भी हमारे पास एम्बुलेंस के लिए स्पेसिफिक बोल सकते हैं लेन नहीं है,
0: जिसको लेन ग्रीन लेन या एम्बुलेंस लेन कहा
1: एम्बुलेंस
0: जाता
1: लेन
0: है।
1: जैसे स्विट्जरलैंड फ्रांस में एक एम्बुलेंस लेन ही है, उसमें कोई और नहीं चलता, सिर्फ एम्बुलेंस चलता है और एम्बुलेंस उसमें फुल स्पीड से जाती है। अब मेरा एम्बुलेंस जो जिसको आपके पास 100 के स्पीड पे आना चाहिए बिकॉज समवन इज डाइंग, वो बेचारी एम्बुलेंस 30 या 40 के स्पीड पे आती है, तो मैं आप तक पहुंचते पहुंचते तक मान के चलिए 40 मिनट लग जाता है। ये 40 मिनट में अगर उस मरीज का पल्स बंद हो चुका है, एज इन हार्ट पंप करना बंद कर दिया है, तो जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक 99% चांसेस है कि मरीज एक्सपायर ही करेगा। इस सिनेरियो में नॉलेज ऑफ CPR हेल्प्स यू अ लॉट कि ठीक है हमारे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास हेल्प आ रहा है, बट ये जो 40 मिनट है जिस समय मेरे पास कोई मेडिकल हेल्प नहीं है, इसमें आप बेसिक नॉलेज बेसिक स्किल्स विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन यू कैन ट्राई टू रिससिटेट द पेशेंट, यू कैन ट्राई टू रिवाइव द पेशेंट। ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है नेक्स्ट 3 या 4 साल के अंदर CBSE करिकुलम विल मेक श्योर कि एवरी 12th पास विल हैव टू हैव अ CPR कोर्स डन, बेसिक CPR का कोर्स होगा जो हर लड़का या बच्चा जो भी होगा वो करके निकलेगा।
0: ये आवश्यक इसलिए भी हो जाता है सर, चूंकि जो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन तक पहुंचने के लिए एक टाइम मिल जाए, डॉक्टर को भी एक विंडो मिल जानी चाहिए जिसके भीतर वो अपना काम कर लें।
1: CPR का स्किल ही वही होता है कि आपको एक विंडो दे देता है कि जब तक आपको प्रॉपर मेडिसिन या जो भी मेन रीजन है, क्योंकि एक नॉन मेडिकल पर्सन अपने लेवल पे जितना नॉलेज रखेगा उतने लेवल पे ही वो हेल्प कर सकता है
0: जी।
1: तो अगर किसी का हार्ट पंप बंद हो गया है तो मैं एक लेमैन से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो बहुत सारी मेडिसिन यूज करे, नहीं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इतना जरूर चेक कर ले कि उस मरीज का जेन्युइनली हार्ट पंप करना बंद कर दिया है पल्स चेक करके, और उसके बाद अगर पंप करना बंद कर दिया तो चेस्ट कंप्रेशन देके पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करें।
0: ये एक बेसिक चीज़ है जो हर किसी को आनी चाहिए, और सर जब ये आपके लेवल से आ रहा है तो इस बात को समझा जा सकता है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। सर, इसके अलावा और छोटी छोटी घटनाएं जो हम लोग देखते हैं, जैसे नॉर्मल घर में पॉइजनिंग के भी केसेस हो जाते हैं, कई बार कोई बच्चा ऐसी चीज़ें इंजेस्ट कर लेता है जो उसको नहीं लेनी चाहिए, तो उस केस में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर गया है तो क्या फर्स्ट एड होना चाहिए?
1: सर देखिए, अलग अलग टॉक्सिक सब्सटेंस का अलग अलग एंटीडोट होता है। कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसका एंटीडोट अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि वो सब्सटेंस मेडिकल फील्ड में उस लेवल पे यूज नहीं हुआ है। तो बहुत बार होता है कभी कभी कुछ भी खा के आ जाते हैं बच्चे। तो इस सिनेरियो में सबसे पहला है कि नेवर एवर वेट, अगर बच्चा कोई दवा कोई केमिकल कुछ भी ऐसा खा लिया है जो नॉर्मल नहीं है और जिसमें केमिकल है, समय बर्बाद किए इमरजेंसी में जाना ही जाना है। और ये हम जान रहे हैं कि वो केमिकल

0: रखने वाले
1: मोस्ट यहाँ इंपॉर्टेंस का सर, फर्स्ट एड करने के समय क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे अगर ब्लीडिंग की बात आपने की, कोई अगर ब्लीडिंग के लिए किसी पेशेंट को तत्काल फर्स्ट एड दिया जाता है, इन बातों का ख्याल
0: से उसको साफ सुथरा किया जाए, हो सके तो हल्का पानी से भी साफ कर सकते हैं, बट एंटीसेप्टिक होना ही चाहिए। और अगर ब्लीड बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसको प्रेशर दे, प्रेशर दे के दबाएं, क्योंकि मेन एम है, फर्स्ट एड का मेन ही एम है कि अगर किसी भी तरह से आगे चल के वो लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं होना चाहिए। तो ब्लीड करके ही पता चला पेशेंट मर जाएगा, इसलिए सबसे पहले ब्लीड को कंप्रेस करके रखें, पट्टी से पूरा कंप्रेशन हाई कंप्रेशन में बांधे और तुरंत से तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए।
1: जी सर, झारखंड में जो स्नेक बाइट का आपने जो एंडेमिक कॉमन चीज़ है कही, इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि किसी प्रकार की झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना है।
0: बिल्कुल
1: सर, स्नेक बाइट्स में फर्स्ट एड क्या होता है? कई लोग वहाँ चीरा लगाने की बात कहते हैं, कुछ लोग इस प्रकार की बात कहते हैं, क्या करना चाहिए उसमें?
0: स्नेक बाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटी स्नेक वेनम देना है, अगर जो पॉइजनस स्नेक ने काटा है। अब बहुत बार ये होता है कि सांप काट के चला जाता है, ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप हमारे पास आएँ तो आप सांप को मार के भी लेके आएँ। बहुत बार ऐसा केस हुआ है कि वो सांप को भी लेके आए हैं हमारे पास, पेशेंट्स के रिलेटिव की ये सांप ने काटा था, हम लोग लेके आ गए, वो आता है तो अच्छी बात है, पता चल जाता है। लेकिन अगर सांप के चक्कर में ना रहे, अगर सांप काटा है नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएँ, जाके बताएं, विद इन 30 मिनट्स हम ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में। उसके लिए कोई स्पेसिफिक मशीन की जरूरत नहीं है, होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करके सिंपल सा टेस्ट आता है, वो टेस्ट करके पता चल जाएगा कि इफ दिस स्नेक जो भी काटा है पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। अगर पॉइजनस पता चलता है तो तुरंत एंटी स्नेक वेनम,
1: इससे पेशेंट के उसकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़
0: बहुत ज्यादा बढ़ती है।
1: सर, स्नेक बाइट्स के साथ एक और चीज जो अक्सर इग्नोर हो जाती है वो डॉग बाइट्स के या एनिमल बाइट्स के केसेस होते हैं, तो इसके लिए क्या फर्स्ट एड होता है? क्या दोनों डिफरेंट होता है या सेम होता है?
0: सर, स्नेक बाइट में एंटी वेनम है, ठीक है। डॉग बाइट अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, डॉग बाइट भी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पर, तो डॉग बाइट के लिए सबसे पहले चीज है, डॉग बाइट अगर है, अगर ये डॉग, अगर कोई भी कुत्ता जंगली हो या डोमेस्टिकेटेड हो, आप आइए और एंटी रेबीज वैक्सीन लीजिए। अभी का जो गाइडलाइंस बताता है कि अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है तो एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है, वो महीने में मतलब उसका शेड्यूल आता है, 5 बार लिया जाता है, 5 बार देके ख़त्म करना होता है।
1: सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि समस्या देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन अगर उसको इग्नोर किया गया, अगर कंसल्टेंट से ना दिखाया गया, तो वो बाद में चल के लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ध्यान इस चीज़ का देना है कि हम लोग फर्स्ट एड दें, और जो भी नियरेस्ट इमरजेंसी है, जो नियरेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनके पास पेशेंट को लेकर के चले जाना चाहिए। सर, फर्स्ट एड को लेकर के एज अ हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ अ वेरी बिग हॉस्पिटल, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: फर्स्ट एड लेके मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी डिले ना करें। चोट लगा है, ठीक है, आपके पास घर पे पट्टी है, आपके पास घर पे मेडिसिन है, पेन किलर है, यस, क्लीन कीजिए वुंड को, पट्टी बांधिए, और नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है, नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल, उनसे मिलिए, एक बार जरूर कंसल्ट लें कि अभी का जो कंडीशन है, हाँ, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मेजर इंजुरी उस समय ना लग रही हो, बट आगे चल के वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। फर्स्ट एड घर पे अपने लेवल पे एक बेसिक फर्स्ट एड होता है, बेसिक टेस्ट कराना जरूरी होता है फर्स्ट एड में, अगर ज़रूरत पड़े तो सिंपल एक्सरे, एक अल्ट्रासाउंड, और ट्रॉमा हो या फिर स्नेक बाइट हो या किसी तरह का एनिमल बाइट हो, उसमें तो आंख बंद करके नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं।
1: फर्स्ट एड को ट्रीटमेंट नहीं मानना है, फर्स्ट एड देके तुरंत ट्रीटमेंट के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाना है।
0: फर्स्ट एड आपको टाइम बाय करके देता है कि जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, मैं इस मरीज का ध्यान रख सकूं और मरीज सेफली पहुंच जाए। उसके बाद डॉक्टर्स को भी इजी पड़ता है कि चलिए वुंड जो है, वुंड में बहुत मेजर ब्लीडिंग नहीं है, तो उसके आगे क्या करना है, उसके आगे हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करके जो भी रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं।
1: सर, आपने फर्स्ट एड पर बहुत अच्छी जानकारी दी, और श्रोताओं से हमारा आग्रह ये है कि फर्स्ट एड को इलाज न समझें, तत्काल फर्स्ट एड देकर तुरंत नियरेस्ट इमरजेंसी में जाएं और अपने रोगी का, अपने मरीज का इलाज कराएं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: आज के बातचीत से यह स्पष्ट हुआ होगा कि आपात स्थिति में घबराने के बजाय सही जानकारी और समझदारी के साथ तत्काल प्राथमिक सहायता देना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि प्राथमिक उपचार चिकित्सकीय उपचार का विकल्प नहीं है, गंभीर स्थिति में तुरंत चिकित्सक की सहायता लेना आवश्यक है। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की यह भेंट वार्ता आपके लिए उपयोगी रही होगी। याद रखिए, संकट के समय सही जानकारी, सही कदम और समय पर मदद किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना डॉक्टर रोहित सेंगर से प्राथमिक उपचार का महत्व विषय पर बेहद ही उपयोगी और महत्वपूर्ण बातें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और जीवन के हर पल को सकारात्मकता या पॉजिटिवनेस के साथ जीना हमारी खुशहाल जिंदगी का आधार है। इसी बेहतर एहसास और खुशनुमा माहौल को आगे बढ़ाते हुए समय है एक मधुर गीत का। प्रकृति की खूबसूरती और मन को सुकून देने वाली भावनाओं से सजा फिल्म प्यासा सावन का एक खूबसूरत गीत। कुछ पल इन सुहानी धुनों के साथ बिताते हैं और सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन का यह प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, गीत की खूबसूरत धुन से निश्चित रूप से आपके मन को प्रकृति की उन हसीन वादियों की सैर करा दिया होगा। साथियों, संगीत मन को सुकून देने के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की कुछ पल खुशी और ताजगी से भर देता है। तो चलिए, इसी खुशनुमा एहसास के साथ हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिकी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियाँ, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
1: कल्याणी अभी हम सुन रहे थे, सूत्रधार थे युवराज कुमार और कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर हम सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे। 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर कामगार बंधुओं का दैनिक प्रसारण श्रमिक लोक। और 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।

शाम 6:02 पर किसान वाणी, 6:32 पर हम सुनेंगे हमारी दुनिया। 7:00 प्रादेशिक समाचार होंगे, 7:11 पर जिले में आजकल, 7:15 पर लोकगीत के कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे हो गीत। कलाकार होंगे कृष्णा हेम्ब्रम और उनके साथी।

आज शनिवार है और आज हम सुनते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार। समय होगा 7:20। शाम 7:45 पर समाचार ध्वनि चित्र और रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम सुनेंगे। 8:30 पर सुर्खियों में, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार होंगे, 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती, रात्रि 10 बजे हम सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आज हम सुनेंगे जयपुर के ए श्रेणी के कलाकार अश्विन एम दलवी का सुरबहार वादन। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 11:10 पर मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होगी।

0: आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी अभी हम ले रहे थे। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सांझ सरगम।
1: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझ सरगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पहला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गीत को हमने लिया है फिल्म सच्चा झूठा से।
3: यूं ही तुम मुझसे बात कर

फिल्म संगीत सांझ सरगम का ये अगला नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना है और इसके गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव परमन।

और अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसमें आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज़ है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, खयाम का संगीत और फिल्म है दर्द।

आइए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बहारों के सपने का ये गाना। मजरूह के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

आइए सुनिए फिल्म मशाल का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

0: अभी हम सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सांझ सरगम। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार SIR के तहत अब तक 7,22,440 आवेदन और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। जमशेदपुर में वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अफगानी नागरिक मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष पुनरीक्षण के दौरान संदिग्ध नाम सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि पुलिस इस मामले में शामिल दो अन्य फरार अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक बैठक आज रांची स्थित चैंबर भवन में हुई। इसमें वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए व्यापारियों की सुरक्षा, उद्योगों को बढ़ावा देने, युवाओं के कौशल विकास और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चैंबर की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी साझा की गई। वहीं नई कार्यकारिणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के चुनाव के लिए कल रांची में मतदान होगा। JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की CBI जांच कराने और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर गिरिडीह में भाजपा ने आज DC और SP कार्यालय का घेराव किया। जामताड़ा जिले के ITI प्रशिक्षण भवन परिसर में आज दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 13 कंपनियों ने भाग लिया और योग्यता एवं दक्षता के आधार पर बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। पूर्वी सिंहभूम में वाहन चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SSP के निर्देश पर गठित SIT ने बाइक और स्कूटी चोरी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 25 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ही रांची केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

6:02 पर आप सुनेंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर होगा कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। चर्चा होगी रक्तदान महादान। भेंटवार्ता होगी रक्तदान महादान। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर शिव चरण हांसदा। भेंट करता होंगे रमेश कुमार दास। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। सात बजकर 15 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। 7:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चर्चा होगी धान की फसल में निराई गुड़ाई। संथाली लोकगीत सुनेगा सुराई मुर्मू और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंटवार्ता होगी तसर कीट पालन कैसे करें। भेंटवार्ताकार होंगे कोलाए बारी और इनसे बातें करेंगे डोबरो गुड़ियोली। हो लोगी सुनेगा सुभाष चंद्र होनहागा और साथियों के स्वर में। 8 हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 10 आप सुनिए गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गीत हमने लिया है फिल्म आज और कल से। गीत लिखा है साहिर ने, संगीत रवि का है और आवाजें दी हैं मोहम्मद रफ़ी ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म आज और कल का ये गाना।

अगला गीत है फिल्म रंगोली से, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

अभी आपने सुना फिल्म बड़ी बहन का ये नगमा। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और प्रेम लता की। अगला गीत है फिल्म कभी कभी से, गायक कलाकार है मुकेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं फिल्म मनपसंद का ये नगमा। आवाज है किशोर कुमार की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत राजेश रोशन का।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz से। अगला कार्यक्रम है फिल्म संगीत का, लौटेंगे बस कुछ ही पल में।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म अप्रैल फूल का ये गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आई सुनते हैं फिल्म नागिन का ये गाना, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा पलामू 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 25 वर्ष सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि अभियान के तहत बूथ से जिला स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति शरद चंद्र सोनक आज रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। दोनों न्यायाधीशों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश दुनिया की खुशहाली की कामना की। देवघर में रक्तदान को जन आंदोलन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में रक्तदान जागरूकता एवं निगरानी समिति की बैठक में जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर बड़े रक्तदान शिविर आयोजित करने की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। लोहरदगा में जिला खनन पदाधिकारी की कार्रवाई के विरोध में लोहरदगा गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने पुराने समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ट्रक मालिकों का आरोप है कि अनावश्यक रूप से ट्रकों को जब्त कर जुर्माना लगाया जा रहा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं होने पर 21 सितंबर से क्षेत्र के करीब 1500 ट्रक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। साहिबगंज जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य लगातार चला रहा है। हालांकि गंगा के जलस्तर में 4 से 5 सेंटीमीटर की कमी आई है और साहिबगंज से पश्चिम के विभिन्न गेजों पर जलस्तर स्थिर है। अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन आइंद के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के खिलाड़ियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 5 वर्ष की कार्ययोजना तैयार की है। रांची में आयोजित प्रेसवार्ता में संघ के सचिव मधुकांत पाठक ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से जल्द ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: फिरलाम विज्ञापन বিরতির পর। শ্রোতা বন্ধু, এখন একটু মনোরঞ্জন হয়ে যাক। তো আজ আপনারা শুনবেন নচিকেতা চক্রবর্তীর কণ্ঠে বাংলা আধুনিক গান।

0: कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बातें करते हैं फिर एक बार रक्तदान महादान पर। कहते हैं कि रक्तदान महादान है क्योंकि यह किसी जरूरतमंद को नया जीवन प्रदान करता है और इसका कोई कृत्रिम विकल्प भी नहीं होता है। रक्तदान का महत्व है श्रोताओं जीवन रक्षा। एक यूनिट रक्त से 3 तक लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्त को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, यह केवल मानव शरीर से ही प्राप्त होता है। स्वस्थ शरीर हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें हैं श्रोताओं। अगर हम समय की बातें करें तो पूरी प्रक्रिया में केवल 8 से 10 मिनट लगते हैं। दान करने से पहले खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन लें। दान के बाद 24 से 48 घंटे तक भारी काम से बचें और भरपूर तरल पदार्थ लें। आज हम रक्तदान महादान पर इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि अगर हम अपने जिले की बातें करें, पश्चिम सिंहभूम की बातें करें, तो रक्त की कमी को देखते हुए जिले के उपायुक्त मनीष कुमार ने एक अभियान छेड़ रखा है जिसके तहत लोग रक्तदान यानी 1 महीने में 2 बार रक्तदान कर रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया भी अच्छी आ रही है। तो चलिए आज हम इसी पर कुछ विशेष बातें करें, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश सुन लें।
1: आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प?
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: आइए श्रोताओं, अब हम कुछ जानकारी लें। रक्तदान करें, जीवन बचाएं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवचरण हांसदा। रक्तदान महादान, इस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहें?
5: सभी को मेरा जोहार एवं नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा माननीय झालसा के निर्देश में तरह तरह की सामाजिक कार्यों में भी जुटी रहती हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है। किसी के जीवन को बचाना, इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता है। इसी तत्वाधान में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का भी यही निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एकत्रित हो ताकि लोग जो है इससे मतलब सीख लें और लोग आगे आएँ कि वो भी ब्लड डोनेट करें। देखें कि व्यवहार न्यायालय भी इसमें पार्टिसिपेट करके अधिक से अधिक ब्लड मतलब एकत्रित करने के लिए प्रयासरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ब्लड एकत्रित करके रखेंगे तो जो हमारा कठिन समय है हम लोग उसको टाल सकते हैं और लोगों का जान बचा सकते हैं। हमारा भी सबसे अपील है कि लोग आगे बढ़ कर के आएँ। DC साहब के द्वारा जो हर माह 2 दिनों का विशेष कैंप लगाया जाता है, लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और रक्तदान करें। रक्तदान महादान है, किसी के जीवन को बचाने से बड़ा कोई कार्य नहीं है। धन्यवाद।
0: अब हम मिल रहे हैं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शिवचरण हांसदा जी से। ये बताइए कि ये जो रक्त है हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
6: और सभी को जोहार पाया डॉक्टर शिवचरण हांसदा, उपाधीक्षक सदर अस्पताल। देखिए आज के समय में हमारे शरीर में जो खून की मात्रा है वो 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर उससे कम रहता है तो शरीर में जो है आपका जो नॉर्मल एक्टिविटी, जो आपका जो जैसे चंचल या फिर बहुत स्वस्थ तरीके से जब काम कर सकते हैं तो कोई काम आपको मन नहीं लगेगा। और उस साथ में जब बीमारियां आती है, जैसे हमारे सदर अस्पताल की बात है, बहुत सारे मरीज जो है ना बीमार अवस्था में बहुत लेट स्टेज में आते हैं, तो उनके लिए जो है खून की बहुत ज़रूरत होती है। उसके साथ ही हमारे पास जो सीजरिन के पेशेंट आते हैं, ऑपरेशन के लिए पेशेंट आते हैं, तो इन सारे पेशेंट्स के लिए इवन टीबी के मरीज भी आते हैं और फिर कुपोषित बच्चे आते हैं, तो इनके लिए हमें ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उस हिसाब से मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनका भी 12 से ऊपर ग्राम हीमोग्लोबिन है तो आपको जरूर रक्तदान करना चाहिए। और वैसे भी जो हमारा जो खून है RBC है, आपको 120 दिन के बाद तो टूट करके कुछ और में बन जाना है, तो इसलिए ये खून किसी के काम आ जाए तो ये हमारा एक तरह से जब हम बोलते हैं ना रक्तदान महादान, तो हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सभी को करना चाहिए, ताकि हमारे जो बीमार है, जिनको आवश्यकता है, अति आवश्यकता, जिनको अभी जैसे सीजरन के समय ब्लड की आवश्यकता होती है हम नहीं दे पाते हैं तो उनको रेफ़र करना पड़ता है। तो इस नाते हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ब्लड हम लोग को देना चाहिए। अभी अभी जैसे हमारे यहाँ जज मैडम लोग खून दी हैं तो बहुत अच्छी बात है ये पहल, हम क्योंकि सभी जगह से रिक्वेस्ट कर रहे थे और रालसा न्यायिक प्राधिकार के पास भी हमारा अर्जी गया था तो उन्होंने सहर स्वीकार किया, तो ये हमारा दूसरा कैंप हो पा रहा है व्यवहार न्यायालय में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
0: अच्छा, कुछ भ्रांतियाँ ऐसी है कि ब्लड देने में लोग कतराते हैं या डरते हैं कि ये ब्लड हम दे देंगे फिर मेरा शरीर में खून घट जाएगा, इस तरह का कुछ?
6: जी, इसीलिए मेरा कहना ना, जैसे आपको ऐसे भी जब हम एनीमिया की बात करते हैं, 11 से नीचे तो एनीमिया कहलाता है, तो सबसे पहले तो हम तो यही कहना चाहेंगे जिनका 11.5 से नीचे हीमोग्लोबिन ना, तो उनका तो हम ब्लड लेंगे भी नहीं, तो उनको खुद के अपने रक्त संचालन या अपने शरीर के श्वसन तंत्र प्लस पाचन तंत्र, ये सारी क्रियाओं को करने के लिए उनको खुद की ज़रूरत है। तो जिनको 11.5 या 12 जब ग्राम हम बता रहे हैं तो उनसे ऊपर है, तो आपको जैसे हमने अभी तुरंत बताया कि RBC का लाइफ स्पेन ही 120 डेज, अगर आप ब्लड नहीं भी दे रहे तो वो आपका रक्त तो ऐसे भी टूट रहा है, तो क्यों नहीं समाज में हम एक जिनको ज़रूरत है उनको दे करके ये करें। तो इसमें ब्लड अगर आपके पास 12 से ज़्यादा है तो आपको करना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई अगर मगर नहीं है, उसमें आपको करने से आपको अंदर से मन भी खुश रहेगा, प्लस ये किसी के प्रति हमने रक्तदान करके अपने समाज के लिए भी एक अच्छा नेक काम हो जाएगा, तो इसमें किसी तरह का भ्रांति हमें नहीं रखनी चाहिए। जिनका ब्लड कम है हम तो निश्चित रूप से बोलेंगे आपको नहीं करना है, लेकिन जिनका ब्लड ज़्यादा है 12 ग्राम से ऊपर है तो बहुत सारे बीमारियों से आपको बचने के लिए आपका ये बहुत अच्छा पहल हो सकता है। कार्डियक जैसे हार्ट हृदय रोग के मरीज है, हाइपरटेंसिव मरीज है, प्लस आज के समय में जो इतना मन चंचल या बहुत तरह की मतलब मन में जो पीड़ाएं रहती है, चिंता रहती है, आपको ये करने से एक पॉजिटिव सोच आएगी, तो ये पॉजिटिव अच्छे सोच के लिए तब ये करना ही चाहिए। तो हम तो बोलेंगे हमारा जैसे इस ज़िले में जो 18 लाख का पॉपुलेशन है, तरह तरह के सभी तरह के मतलब समुदाय के लोग रहते हैं, तो हमारे जैसे हमारे विदेश विशेषकर आदिवासी भाइयों को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें आपको भ्रांतियाँ रखने की ज़रूरत नहीं। अभी जैसे हम यहाँ पे कैंप हो रहा है तो पता चला किसी का 10 ग्राम है, तो अगर आप कैंप आते हैं तो हम आपको पहले स्क्रीनिंग करेंगे, आपको अगर BP बढ़ा हुआ है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम आपको ब्लड के लिए नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि आपको दवाइयाँ दे करके, आयरन की गोलियाँ दे करके आपको अगले 3 महीने के लिए आपको तैयार करेंगे। अगर हो पाता है तो अच्छी बात है, ये तो हमारे शरीर को भी एक तरह से हम स्क्रीनिंग करके जो है हमारा क्या स्टेटस ये पता चल पा रहा है, तो दोनों तरह से हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको ज़बरदस्ती किसी को रख देने की बात नहीं है, आपका अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा है तो आपको करना है, आपका कम है तो हम आपको आयरन की गोली दे करके प्लस आपके जीवन शैली के साथ आपको क्या खाना नहीं खाना सारे हमारे स्टाफ के द्वारा ये स्क्रीनिंग किया जा रहा है। रिक्वेस्ट रहेगा हमारे समाज में देखते हैं बीमार लोग बहुत लेट से अस्पताल आते हैं, इवन जैसे बहुत सिंपल मलेरिया में तो खैर आपको एक सप्ताह के अंदर खून की कमी हो जाती है, लेकिन उसी तरह से टाइफाइड के केसेस में भी अगर बहुत लंबा समय से आपका बुखार टाइफाइड का बीमारी है तो उसमें भी खून की कमी होती है, TB में तो होता ही होता है, प्लस महिला में जो अपना जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना उसके चलते भी ये खून की कमी होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहा है कि जब किसी का तबीयत खराब होता है तो आपको बहुत लेट नहीं करना चाहिए, 2-4 दिन के बाद डायग्नोसिस ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आप दवाई अगर खाना शुरू करेंगे तो हमारा जो टैबलेट है एसीटी का गोली है उसी सब का इलाज हो जाएगा, अदरवाइज हमको आर्टिसोनेट के इंजेक्शन देना पड़ता है, उसमें सरकार को भी नुकसान होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना जल्दी हो सकता है बीमार आप हो गए 1-2 दिन के अंदर जो है आप डायग्नोसिस में आइए, इवन यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। आज के डेट में हमारा पूरा जिला पश्चिम सिंहभूम में हमने उद्यम कर नाम से हमारा मलेरिया का स्क्रीनिंग हो रहा है, तरह तरह के सारे बीमारियों का स्क्रीनिंग हो रहा है, तो आपको उसमें आना चाहिए। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सीकिंग बिहेवियर, अभी हमारे डीसी साहब के तरफ बहुत अच्छा पहल है कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, आपको बीमारी होने से पहले का प्रक्रिया में भी जाना चाहिए, प्लस बीमार है तो जल्दी से उसको जांच भी कर लेना चाहिए। तो हमें बीमार है नहीं है उसके लिए आपको दोनों बात की स्क्रीनिंग भी करना चाहिए, दूसरा है कि अगर तबीयत खराब लग रहा है तुरंत आपको 2 दिन के अंदर में अस्पताल जाकर के जांच कराना चाहिए। तो जब तक आप जांच नहीं कराएंगे तो बीमारी का पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, हम सभी तरह के बीमारियों के लिए आप अस्पताल की ओर रुख करने का आपका रिक्वेस्ट करेंगे, और अच्छा स्वास्थ्य है, हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा है, तब फिर आपको डोनेशन में पहल करना चाहिए। अभी डीसी सर के द्वारा 8 और 24 तारीख को जो है ना बहुत सुंदर तरीके से पहल के पश्चात हम लोग लगभग हर कैंप में 500 की संख्या में ब्लड ले पा रहे हैं, और ये हमारे लोगों को ही दिया जा रहा है। तो इसमें एक अच्छा प्रशासनिक पहल के तहत हमारे लोगों को बहुत अच्छा सुविधा दे पा रहे हैं। तो हम सबको ये सोचना चाहिए, जिम्मेदारी निभाने की बात है, एक अच्छा लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं, तो ये हमको आगे बढ़ चढ़ करके इसका जिम्मेदारी को एहसास करते हुए रोल निभाना होगा सभी को। जो
7: पुलिस
8: मिस सीमा
7: जी
8: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
7: क्यों लेकिन मैं
8: अकेले दूसरे कमरे में जाइए, आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
7: डिजिटल अरेस्ट?
8: 1 लाख दो बच जाओगे।
7: इतने पैसे?
8: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
7: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
9: हेलो मम्मा।
10: RBI कहता है
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं अभी हम जानकारी ले रहे थे, रक्तदान करें जीवन बचाएं। सबसे पहले हम जानकारी ले रहे थे रवि चौधरी जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिम सिंहभूम के, और उसके बाद डॉक्टर शिवचरण हांसदा से।

श्रोताओं, अब आइए कुछ और हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संथागत देखरेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन व

वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल है क्या। दोस्तों, यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए श्रोताओं, भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी उम्र कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। अगर आप पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो। श्रोताओं, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। परिवार हर बच्चे का अधिकार, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। श्रोताओं, एक खास बात और मैं आपको बता दूं विशेष जानकारी के लिए कि इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। ये तो रही कुछ खास बातें। चलते चलते श्रोताओं, कुछ और हम जानकारी ले लें। फलेरिया यानी जिसे हम हाथी पांव कहते हैं, क्या आप जानते हैं फलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक है? तो श्रोताओं, फलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी मच्छर के काटने से होता है। फलेरिया दूसरी सबसे ज्यादा विकलांग एवं कुरूपता कराने वाली बीमारी है। यह शरीर के और भी अंगों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है और बीमारी का पता चलने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। हाइड्रोसिल का इलाज असंभव जो है ससमय संभव है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में आया सूजन आमतौर पर लाइलाज होता है। पीड़ित व्यक्तियों को सहायता और करुणा की आवश्यकता होती है। समुदाय द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। मैं बता दूं कि झारखंड में रहने वाले सभी 4 करोड़ लोगों को इस बीमारी का होने का खतरा है। अब कुछ इस बीमारी से बचाव बहुत आसान है श्रोताओं। साल में सिर्फ एक बार फलेरिया रोधी दवा का सेवन करना है। आप यह सुनिश्चित करें कि 2 साल के छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को यह दवा नहीं देना है। यह दवा खाली पेट नहीं खानी है। कृपया सभी दवाइयों का सेवन एक बार में ही करें। कुछ लोगों पर दवा खाने से मामूली प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, जैसे सर दर्द, उल्टी, चक्कर, बुखार, दस्त इत्यादि, जिससे घबराने की जरूरत नहीं बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर के कीड़े फलेरिया रोधी दवा खाने से मर रहे हैं। तो आइए, हाथी पांव मिटेगा बस वर्ष में एक खुराक, जो बिल्कुल सुरक्षित और मुफ्त है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
4: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जुड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
3: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
5: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
0: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
8: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
7: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
8: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए
9: एनएसबी कराने?
8: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
11: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
10: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी

0: से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर राज्य सरकार सख्त, जिला स्तर पर टास्क फोर्स सेल के गठन और चेकनाके बनाने का निर्देश। जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों ने रांची में की प्रेस वार्ता, कहा दोषियों पर कार्रवाई जरूरी, पर सभी चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी रद्द करना उचित नहीं। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक रिपोर्ट पेश, नई कार्यकारिणी के लिए कल रांची में होगा मतदान। पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस ने बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया खुलासा, 25 वाहन के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। और झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 को लेकर तैयार की 5 वर्ष की कार्य योजना, राज्य सरकार के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सचिव अरवा राजकमल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में जल्द जिला स्तरीय टास्क फोर्स सेल का गठन होगा और अवैध परिवहन पर नजर रखने के लिए जगह जगह चेकनाके बनाए जाएंगे। साथ ही हाईकोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन, खनन प्रहरी ऐप पर मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और थानों में जब्त खनिजों व वाहनों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। बैठक में खनन निदेशक राहुल कुमार सिन्हा समेत परिवहन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी तथा सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और खनन पदाधिकारी शामिल हुए। जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर परीक्षा और चयन को लेकर अपनी बात रखी। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने वर्षों की मेहनत और पढ़ाई के बाद परीक्षा में सफलता हासिल की है। किसी भी गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सभी चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी रद्द करना उचित नहीं है।
2: इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 600 सफल आदिवासी छात्र, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हम मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम मीडिया को बस इतना बोलना चाहते हैं जो फैक्ट है आप उसको सामने रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब प्रकार की जांच करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रगल जेन्युइन, जो हम लोग कैंडिडेट हैं, किस प्रकार से हम लोग जो तैयारी किए हैं, उस पक्ष को सही ढंग से नहीं रखा जा रहा है।
1: जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गिरिडीह में भाजपा ने आज डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग दोहराई।
3: हम सब लोगों की मांग इतना ही है कि जो बच्चों के ऊपर उन्होंने फायर किया है उसको बिना सरहुक वापस। और दूसरा मांग है जेसीसी और जेपीएससी के द्वारा पिछले 5-6 वर्षों जो नियुक्तियां हुई सब विवादों में घिराना, पूरे मामले की जांच सीबीआई से सरकार करा।
1: जातीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग को लेकर 16 सितंबर को रांची में पैदल मार्च निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जनगणना फॉर्म में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग कॉलम है, लेकिन ओबीसी के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है।
4: ओबीसी आधारित जातीय जनगणना इसमें 10वां कॉलम में होनी चाहिए, अलग वोट जाति का होना चाहिए ताकि ओबीसी के लोग अपनी संख्या का पता लगा सके। अलग अलग समुदाय के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये सारी चीजों को उसमें जानकारी मिलेगी।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने कम्युनिटी हेल्थ में स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने वर्ष 2019 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 4,200 रुपये का ग्रेड पे देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति एमएस सोनक आज रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। दोनों न्यायाधीशों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश दुनिया की खुशहाली की कामना की। उनके आगमन पर डीसी और एसपी ने उनका स्वागत किया और पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने आज देवघर बाबा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के लिए कल रांची में मतदान होगा, इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे पहले चैम्बर की वार्षिक बैठक आज रांची स्थित चैम्बर भवन में हुई। इसमें वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए व्यापारियों की सुरक्षा, उद्योगों को बढ़ावा देने, युवाओं के कौशल विकास और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चैम्बर की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी साझा की गई। पूर्वी सिंहभूम में वाहन चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SSP के निर्देश पर गठित SIT ने बाइक और स्कूटी चोरी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 25 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की है। ग्रामीण SP शुभम खंडेलवाल ने बताया कि यह गिरोह जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों से वाहन चोरी कर ग्रामीण इलाकों में बेचते थे।
5: SIT टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को फिर से गिरफ्तार किया। 15 दिनों में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, इनके पास से टोटल 25 टू व्हीलर को बरामद किया गया है चोरी की हुई, और इसी गैंग के 5 सदस्यों को अभी तक हम लोगों ने गिरफ्तार किया। अलग अलग थाना से ये लोग चोरी करते थे और ग्रामीणों को और शहर में भी सस्ते दाम में बेचते थे।
1: रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नवनियुक्त भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर सीमा सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के साथ साथ आम जनता की हक की लड़ाई और मजबूती से आगे बढ़ाएगा।
6: इस संगठन में हम महिला मोर्चा के जितने भी जिम्मेदारी आती है, वर्तमान में जो महिलाओं की स्थिति है, युवा महिला की स्थिति है, छात्रों की स्थिति है, उसको लेकर हम लोग लगातार विरोध करते हैं। महिला आयोग को लेकर लगातार विरोध करते हैं और न्याय के लिए पूरी महिला मोर्चा हर जगह आपको दिखेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है।
1: गुजरात और दिल्ली में बम विस्फोट की धमकी देने वाले ईमेल के मामले में गुजरात की पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ देवघर में छापेमारी कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उससे गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह जिले के पीरटाण प्रखंड मुख्यालय में आज झामुमो की ओर से दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में झारखंड सरकार के मंत्री चमरालंडा तथा पूर्व मंत्री बेबी देवी शामिल हुई। मंत्री चमरालंडा ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से झारखंड को अपूर्णीय क्षति हुई है।
7: हमारा पाठ का रीढ़ की हड्डी थे। हम अपने तरफ से यह कह सकेंगे कि परिवार को आगे बढ़ने का लक्ष्य देना और इनके आत्मा को उस शक्ति के रूप में प्रेरित कराना, उस चांद के रूप में, उस तारे के रूप में जो लोगों को प्रेरित करते रहे, बहुत बड़ा चीज खो दिया हमने, बहुत बड़ा चीज।
1: झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के खिलाड़ियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 5 वर्ष की कार्य योजना तैयार की है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के सचिव मधुकांत पाठक ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से जल्द ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा।
8: जब तक कुछ ज्यादा प्लेयर नहीं आएंगे तब तक थोड़ा मटेरियल नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का। सरकार के पास हमारा प्रस्ताव लंबित है और इवन नहीं भी खुलेगा तो हम समाज के कुछ लोगों को जोड़कर सेंटर खोलेंगे और खोल के फिर हम बृहद रूप से 2030 के लिए अपनी टीम तैयार करेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर राज्य सरकार सख्त। जिला स्तर पर टास्क फोर्स सेल के गठन और चेकनाके बनाने का निर्देश। JSSC CGL के चयनित अभ्यर्थियों ने रांची में की प्रेस वार्ता, कहा दोषियों पर कार्रवाई जरूरी, पर सभी चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी रद्द करना उचित नहीं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक रिपोर्ट पेश, नई कार्यकारिणी के लिए कल रांची में होगा मतदान। पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस ने बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया खुलासा, 25 वाहन के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। और झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 को लेकर तैयार की 5 वर्ष की कार्य योजना, राज्य सरकार के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार। अरे चुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
1: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
0: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
1: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
0: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
1: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
1: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
0: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
1: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
0: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
1: और लड़के की 21 वर्ष है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में यह पूरा सप्ताह आंदोलन प्रदर्शन में व्यतीत हुआ। विगत 8 सितंबर को जहां झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं ठीक इसके दूसरे दिन 9 सितंबर को सवर्ण समाज के बैनर तले लोगों ने यूजीसी एससी एसटी एक्ट और आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं 11 सितंबर को राष्ट्रीय बैंकों में कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया। इसका आम जनजीवन पर काफी असर देखा गया। 8 सितंबर के भाजपा के धरना प्रदर्शन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के भी शामिल होने से कार्यक्रम काफी चर्चित रहा। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ ने झारखंड राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विरोध के कारणों के संबंध में जानकारी दी।
2: जो आंदोलन युवाओं का था, अद्भुत था। क्या अनुशासित, क्या संस्कारी, किसी खिलाफ नारे ले, किसी का मुर्दाबाद नहीं हुआ, किसी पत्थरबाजी नहीं, कोई भोंगा प्रदर्शन नहीं हुआ, और एक मैसेज पूरे देश को दिया कि देखो एक अनुशासित तरीके से, संस्कारी तरीके से आंदोलन सकता है, किंतु बच्चों के साथ न्याय तभी होगा जब सीबीआई का। तो लैंड वाले घोटाले में सीआईडी जांच हुई ठंडे बस्ते में, बालू ठंडे बस्ते में, कोयला ठंडे, हर चीज। इसीलिए सीबीआई जरूरी है क्योंकि ये बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, जमीन इन्वॉल्व है।
1: इधर सवर्ण समाज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के संबंध में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों ने अपनी मांगों को रखा। इस दौरान धरना पर बैठे परशुराम उपाध्याय उर्फ दुदुन उपाध्याय ने अपनी मांगों के संबंध में बोलते हुए कहा,
3: हम लोग चाहते हैं जो यूजीसी है उसको हटाया जाए, इससे हमारे सवर्ण बच्चे को नुकसान है, इन्हें जेल जाने का भय हरदम सताते रहे। साथ में जो एससी एसटी एक्ट में नया जोड़ा गया है उसको भी हटाया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए जिसमें सभी जाति के लोग जो आरक्षण के पात्र हैं उनको रखा जाए।
1: जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरी तरह से भक्तिपूर्ण माहौल में धूमधाम से मनाई गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे 6 दिनों तक पूरे जिले में चला, जिसका समापन बुधवार को छठी के आयोजन के साथ किया गया। जिले के बंसीधर नगर स्थित सुप्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में इस अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में महिला श्रद्धालुओं के श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े सोहर गायन से पूरा वातावरण को भक्तिमय बना रहा।

जिले में सितंबर महीने के शुरुआत से ही अच्छी बारिश हुई। इससे खासकर धान सहित सभी खरीफ फसलों को काफी लाभ हुआ है। साथ ही जिले के नदी, तालाब, आहर सहित सभी जल स्रोतों में पानी भर जाने

0: से सभी क्षेत्रों में जल स्तर ऊपर आ चुके हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
1: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की महाली साई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांति महाली, यशोदा महाली, शांति महाली। बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा सीमा नायक, सुदर्शन प्रमाणिक, ममता नमिता सुशीला, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती रमेश, अन्नू बनवाली, सिद्धू कुमारी और पूजा। खसवा पति साई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनुआ गांव पोड़ा हाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मखरू आचार्य। बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार। चांडिल ग्राम हरुडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो और दिनबंधु। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म असली नकली का ये नगमा। आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की है। वसुंधरा कॉलोनी सेंडोला चाईबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर। जोजो कुर्मा से मनोज गागराई, बसंती गागराई, सोनाली गागराई, आयशा गागराई, रचना गागराई, जितेंद्र गागराई। चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष आनंद। मौरडिया सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुयस नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीलपानी प्रधान, निक पानी प्रधान। तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी। आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस फिल्म का गाना आवाजें हेमलता की है।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। बड़े बाजार चाईबासा से मुअज्जम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी बिट्टू, किरण, रोशनी परी, मुस्कान नबीहा। बड़े बाजार चाईबासा से भगीरत महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। गांव कोयडा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांदा। अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी, रोहन कुमार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लैला मजनू का ये नगमा। आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट

0: पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी।
4: लेकिन आको अलेमान को ले उड़ू यंडो सही जगह रे अबेन दिंग अबेन नामे का सही जगह कुल्ले बेन तियान को अबेन होरा कुटर बेन अड़ा थाट को जो सनते हो को नेल को तन गया को अते को फोटो को तना
5: सुलाली को फोटो को
3: पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी।
6: वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहाँ 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
7: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बात है हमारे जो खेल चलते बढ़िया।
6: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
8: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
6: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
9: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिले हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गाँव में खुशहाली आ रही है।
6: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
10: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
6: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
11: मैं AIF का डायरेक्टर हूँ, मेरा AIF पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
6: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
12: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
6: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, बाबा कुट्टी उपरापाटन से प्रेम साहू और यमुना साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ठोकर का ये नगमा, आवाज़ें मुकेश की है।

इस गीत के साथ ही शुद्ध हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से, और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स सम्मेलन पर आधारित।

अपरिहार्य कारणों से हम आपको ये कार्यक्रम नहीं सुना पाए, इसके लिए हमें खेद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। अगली फरमाइश है पंच से।

रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुढ़ाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अनजाना का ये नगमा। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है।

अगली फरमाइश है गांव हड़ीरा से मानताराम सिंह कुंटिया। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कोरा कागज़ का ये गाना, आवाज़ें किशोर कुमार की है।

0: और आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉ हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉ पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।

0: चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से अडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।
0: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद
0: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
2: जी बहुत धन्यवाद मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा पत्र है
0: जी,
2: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा
0: जी।
2: क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे। परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस दो दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत, ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये तीन देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें तीन देश जो इसमें भागीदार हैं, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहाँ पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहाँ पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजन है, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड हैं, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं, जो कि पीपल सेंट्रिक हो, जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए, निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में, तो ये सभी चीजें इसमें हैं। और मैं समझता हूँ जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है, जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
0: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने अम्बेसडर सज्जन हार को सुना, उन्होंने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
3: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में, और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई, और जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही। तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टैचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, एक ऐसे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है, जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना है इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो पहले एक हिचक होती थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
0: आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अब ये समूह परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
0: अम्बेसडर सज्जनहार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे अंदर हमारे भीतर काफी अंतर हैं, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
2: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं।
0: जी
2: ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं। और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शन इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न हैं, हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूं परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ। तो जो उन्होंने कहा है जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की,
0: बिल्कुल
2: 40% है इसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रपोर्शन, 40% है इसकी।
4: अभी हम सुन रहे थे सुर्खियों में, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना

0: और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है, तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर

0: से पोजीशन और पॉलिसी प्रायोरिटी आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थान को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
3: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में यानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की।

0: दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कृपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS Nations adopts New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds a series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of Red Notice

0: यूएस ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सबलेंका और एलिना रविकिना आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। इसमें तनाज़ियात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया है। ब्रिक्स मुल्कों ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी महाजराई और लड़ाई नेज़ बैनुल अक़वामी निज़ाम में बिखराव और इख्तलाफात की मौजूदा सूरत हाल पर तश्वीश का इजहार किया है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पहले दिन मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिया में रहनुमाओं ने एक ऐसा कसीर रुखी रवैया अख्तियार किए जाने की हिमायत की जिसमें अहम आलमी उमूर पर मुख्तलिफ मुल्कों के अलग अलग नुक्ते नज़र और मौक़िफ़ का एहतराम किया जाए। इनमें पायदार तरक्की, भुखमरी और गुरबत का खात्मा और आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक से आलमी सतह पर इकदाम के मामले शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के तबादले ख्याल से ये बात नुमाया हो गई है कि फरसूदा इदारे बदलती हुई दुनिया का निज़ाम नहीं चला सकते, और साथ ही उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नुमाइंदगी इकदाम करने और ज़ाबते मुरतब करने में इस्लाहात लाजमी हैं। जनाब मोदी ने कहा कि रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियाँ तैयार करने और इनसे वाबस्ता ज़ाबते मुरतब करने में ग्लोबल साउथ की मसावियाना शमूलियत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया है उसमें मेंबर मुल्कों के मुश्तरका अज़्म के लिए वाज़ह सिमत तय की गई है। जनाब मोदी ने कहा कि इन वादों और अहद को हकीकी नतीजों में बदलना अब मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
0: ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर में पिछले साल 22 अप्रैल के दहशत गर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अहद को दोहराया। इससे पहले आज सपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने खिताब में तसलसल और अमल दरामद से मुतालिक ब्रिक्स तरीक़े कार तजवीज़ किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर साल ब्रिक्स की सदारत किसी दूसरे मुल्क के हाथ में आने के बावजूद ग्रुप की इदारा जाती रफ्तार बरकरार रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरीक़े कार की बदौलत ट्रायोका के जरिए सभी इकदाम पर आगे की कार्रवाई और नतीजों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों को अगले 20 साल के लिए एक नए और बड़े एजेंडे पर काम करना होगा। जनाब मोदी ने मल्लाहों के लिए इमरजेंसी इमदादी नेटवर्क कायम करने की तजवीज़ भी पेश की ताकि मुश्किल की घड़ी में इमदाद में सहूलत की खातिर बहरी हुक्काम और मुतअल्लिका मुल्कों के सिफारती मिशनों को बाहम मुंसलिक किया जा सके।
1: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स मुल्कों के माबेन इत्तेहाद और इत्तेफाक राय को आलमी मंजरनामे पर ठोस नतीजों की शक्ल दी जाए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की सदारत में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की भारत की अवलीन तरजीहात रही हैं। इन तरजीहात से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत ने ब्रिक्स इश्तराक को सीधे आम आदमी के साथ जोड़ने पर खास जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर बहरान के मामले में तो ग्लोबल साउथ पेश पेश है लेकिन फैसला साजी के एतबार से सबसे पीछे है। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के मामले पर वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि अब इसे और मुअख्खर नहीं किया जा सकता।
1: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता।

0: समाचार आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, किसी रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। चिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूँ और भीतर भी हूँ। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई, तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा, हम कहीं जा नहीं सकते। लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी, उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया, लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा, लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूर्णों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है, और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए, और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया, उसी निष्ठा से जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बाँछें खिल गईं। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है। माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल भर रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
0: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है बांग्ला, और इसी बांग्ला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी साजोंग का।
2: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान, और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप। ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला, एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है, हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता निशिशालजो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवंत परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है? इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
4: मेरा नाम

0: अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा वनगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की, उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिशी साल्जो, जो कि सन के गॉड हैं। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वनगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वनगला, ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वनगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है, हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम्स जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
1: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
2: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
1: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
2: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
0: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं, कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नासापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं, फिर रुकमचु। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम चेंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियाँ पहनते हैं उसको हम चकसान बोलते हैं, हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
2: पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
3: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंद्रह होता है, जो वो गामसा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंद्रह कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम दोमे भी पहनते हैं। दोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
1: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है, और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
2: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
4: आशीर्वाद मिसी साल्जोंग का गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व, और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरया।

0: सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत, इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगरुशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगरुशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पूना में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगरुशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगरुशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है। हम गुलाल नहीं यूज करते, और तीसरी बात यानी हमारे जो म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है। गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से।

0: हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
1: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
2: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
1: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
2: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
1: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
2: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
3: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना, पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियाँ सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
4: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड व्हेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
2: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
0: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स सम्मेलन पर आधारित कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत। सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।
3: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
5: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद
3: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
5: जी, बहुत धन्यवाद मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा पत्र है
3: जी,
5: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे। परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस दो दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये तीन देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें तीन देश जो इसमें भागीदार हैं, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहाँ पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहाँ पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजंस है, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए,

0: जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए। तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं, जो कि पीपल सेंट्रिक हो,
1: बिल्कुल,
0: जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए, निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में। तो ये सभी चीजें इसमें हैं। और मैं समझता हूं जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है, जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
1: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने एम्बेसडर सज्जन हार को सुना, उन्होंने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
2: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में, और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई, और जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही। तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टैचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है, जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना है इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहां पर कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो पहले एक हिचक होती थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
1: आपने बहुत एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अभी समूह परिपक्व हो गया है. उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज. पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा.
3: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है. पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है. हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं. हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं.
1: अम्बेसडर सज्जनहार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे अंदर, हमारे भीतर काफी अंतर हैं, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है. इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
0: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं.
1: जी
0: ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं. और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं. तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए. और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शन इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है. परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न है, हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूं परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है. और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ. तो जो उन्होंने कहा है जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की.
1: बिल्कुल
0: 40% है इसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है. 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं, रूस पहले था, अभी यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया सभी मिलकर आ गए हैं. तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा आर्थिक शक्ति है परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा. परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है, जो ये गुट, हालांकि इसमें इतनी विविधता है परंतु फिर भी ये एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं. और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है. अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है. क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते हैं.
1: बिल्कुल.
0: परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी.
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटरी रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया. पहले सुनते हैं क्या कहा.
3: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे. ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग

0: और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है, तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है वो भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इसमें?
2: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप दो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है और मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देशों पर पड़ रहा है, जो सबसे जो विकासशील देश है उन पर पड़ रहा है और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशंस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे, और बड़ी शक्तियां ये बात बिल्कुल सही है नहीं सुन रही हैं। तो कहां उसमें भारत ने जो लीड ली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है, और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स के एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भारत की, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है, और भारत उसको अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, और दूसरा भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल साउथ के देशों में। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की, या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये प्रयास भारत का लगातार जारी है, और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में, भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
1: बात अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर्स से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि UNSC है यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत जरूरी है, और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।
0: UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता, इस विषय पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: जी, अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है, और ये कितना जरूरी हो गया है?
3: जी, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं, ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे यूएन जनरल असेंबली में, तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मल्टीलैटरलिज्म हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है, एकदम इतने उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो वहां पर पीस, सिक्योरिटी, शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए पूरे विश्व में। अब हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 4.5 साल से, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया है, और अभी ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध भी कितने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसमें भी कुछ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई योगदान नहीं दे पाया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है वो उसका कार्यशीलता बढ़ेगी, वो अच्छा अपना काम कर पाएगा अगर वो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। वही बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वहां पर भी जो लीडरशिप है, वोटिंग राइट्स है, वो आजकल की इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ब्रिक्स में देखा जाए, चीन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में
1: जी।
3: भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भी हमारे इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु उनको अपने जितना उनका योगदान है उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भारत करीब 18% योगदान करता है ग्लोबल ग्रोथ में, परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो उनको
1: उनको आवाज नहीं मिल रही, जितना योगदान है उतनी आवाज नहीं मिल रही,
3: उतनी आवाज नहीं मिल रही, और उसको जरूर मिलना चाहिए
1: जी। एक और बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही, वो थी कि समुद्री यात्री यानी कि सी फेयरर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सुनते हैं क्या कहा।
0: सी फेयरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री ने जो सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जो एक पेशकश की है, अगर हम मौजूदा परिपेक्ष में देखें, खासकर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है और उससे पहले भी उसके साथ साथ, और न सिर्फ पश्चिम एशिया में पर और भी हिस्सों में जो भारत विश्व के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, सप्लाई चेन में जो हम आजकल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं, उन सब के मद्देनजर ये जो प्रपोजल, ये जो एक प्रधानमंत्री ने बात कही है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए, ये कितनी अहम है?
2: ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट एक पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वैश्विक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उसमें सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, ग्लोबल कॉमर्स पर हो रहा है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, और जो एक जिस तरह से वैश्विक ढांचा बना हुआ था व्यापार का, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है। और ये बात भारत लगातार कहता रहा है कि जो बेसिक ग्लोबल गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसका प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, गरीब देशों पर पड़ता है, और ग्लोबल कॉमर्स जिस तरह से डिस्टर्ब होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रहे हैं। तो

0: कहीं पर इसको सुदृढ़ करना, इसमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आपकी मदद कर पाए कठिन से कठिन समय में, जब दो देश युद्ध में युद्ध लड़ रहे हों, लेकिन कहीं पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉर फाइटिंग के वो प्रोटेक्ट रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है और इसको इसका समर्थन जरूर काफी हद तक न सिर्फ ब्रिक्स के देश बल्कि ब्रिक्स से आगे जो देश हैं, ब्रिक्स के बाहर जो देश हैं वो भी करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, लोगों की लाइवलीहुड पर है, लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल भारत ने प्रस्तुत किया है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, और
1: जी
0: अगर ये आत्मसात होता है, अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है ग्राउंड पर, तो इसका बेनिफिट ग्लोबल होगा, न सिर्फ भारत को होगा बल्कि दुनिया में होगा।
1: जी अब बात करते हैं कि आज जो पूरा दिन की गतिविधियां हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं, आज आए हैं, और उनके साथ आज कुछ देर पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, और इन दोनों नेताओं के बीच में ये 3 साल में तीसरी मुलाकात थी। पहले सुनते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपके सकारात्मक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमें द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। एक बार फिर भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन, दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक हुई है ये कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसे आपने बताया, जो ये पिछले 3 साल में तीसरी बैठक है, जो हमारे बीच के जो संबंध थे उनमें बहुत एक शॉक उसको मिला था, बड़ी खटास आ गई थी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जून 2020 में, और वो 5 साल तक चलता रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे और जो हमारे संबंध थे, राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, उनको बहुत ही निचले स्तर पर हम ले आए थे और बहुत से ऐसे अंकुश भी लगा दिए थे भारत ने जो चीन के साथ संबंधों पर। परंतु इसकी फिर से शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब कजान में रूस में ब्रिक्स की समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई और तब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुरू हुआ। और फिर पिछले साल त्यानजिन में मुलाकात हुई, इस बारी बिश्केक में भी 10 दिन पहले मुलाकात हुई, परंतु कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। परंतु आज ये मुलाकात हुई और मैं समझता हूं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था 2024 में अक्टूबर में, जिससे कि हमने वीजा देने शुरू कर दिए थे, फैसिलिटेट कर दिए थे, जिससे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमने फिर से प्रारंभ कर दी थी, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी सी हमने ढील दे दी थी, उसके जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा लिबरल बना दिया था, लूजन कर दिया था। तो ये मैं समझता हूं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये शुरुआत हुई थी 2024 में और आज की मुलाकात में देखता हूं, देखिए मैं नहीं समझता जो कोई बहुत ही इतना बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं तो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकॉग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शन किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में, 2020 में तो गलवान हुआ। तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए और वहां पर शांति रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
1: चर्चा को आगे

0: बताएंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ, जो इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम में। आनंद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
1: अनुभा, ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। सत्र के आज समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभव,
0: आनंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश है मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए?
2: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलें और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी बता रहे थे, कल भी वार्ताएं होंगी, लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है, वो मुझे लगता है अपने आप में भारत का भी एक जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं भारत की, उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी। और आगे जैसे जैसे ये संबंध और गहरे होंगे, हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
0: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्ष पंत, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
4: सुर्खियों में
5: आप सुन रहे थे सुर्खियों में। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाओं पर विशेष चर्चा। चर्चा में भाग ले रहे थे अशोक संजनहार, फॉर्मर एम्बेसडर, एंड हर्ष वी पंत, इंटरनेशनल अफेयर ऑफ एक्सपर्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रस्तोगी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। सुरों के रंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गाना हमने लिया है फिल्म आंधी से, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म सफर का ये गाना, आवाज़ें हैं मन्ना डे की।

फिल्म सफ़र के इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं। सुनिए इस वक्त की अहम खबरें। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णय और परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई से पाटना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाई से भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की साझेदारी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपति दीदियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए वांछित आरोपी अमृतपाल सिंह को मालदीव से भारत प्रत्यर्पित कराया। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में देर रात मौजूदा चैंपियन आर्याना सबलिंका का सामना एलिना रिबाकिना से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हुजूर आपका भी एहतराम।